0: 20 के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने विदेशी मेहमानों का स्वागत भी किया, विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी और साथ ही सितंबर के माह में जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुए हैं भारत में उनका उल्लेख किया, जिसमें ब्रिक्स सम्मेलन का उल्लेख था, समावेशी वित्त का उल्लेख आपने किया, ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का उल्लेख किया और ये कहा कि देश पर दुनिया के देशों का भरोसा अब बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और ऐसे में भारत की बनाई हुई चिप जो है वो दुनिया तक पहुंच रही है। वैसे भी प्रधानमंत्री जी देश को प्रेरित करते रहे हैं मेक इन इंडिया का उल्लेख करते हुए, फिर मेड फॉर द वर्ल्ड का उल्लेख आपने किया, वोकल फॉर लोकल हमें कहा तो लोकल टू ग्लोबल भी कहा और मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हुए अपने लोकतंत्र के मूल्यों को हम बचाए रखें लेकिन साथ ही आधुनिकता का हाथ भी थामें और इस तरह से विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें। ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर, धुन के पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरित करते रहे हैं और इसी तरह का प्रेरणा देने वाला आज का ये आयोजन यशोभूमि में जो शुरू हुआ, आज इसका उद्घाटन हुआ है और अगले 3 दिनों तक ये आयोजन चलेगा। आप आयोजन के उद्घाटन सत्र का विवरण आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे। लाइव प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी अनुपम हरियाणवी के साथ मैं नीलम मलकानी, अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण से अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन सत्र का सजीव विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक रॉय।

50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 6 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के पवेलियन, भारत से 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक स्टार्टअप पवेलियन शामिल है। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम तक इकोसिस्टम का निर्माण। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देशभर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर महानिदेशक एस सुब्रमण्यम भी उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आज है 17 सितंबर यानी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। आज मनाया जाता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और इसका मुख्य उद्देश्य है मरीजों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, चिकित्सा के दौरान होने वाली गलतियों को कम करना। WHO हर साल इस विशेष दिन के लिए एक खास थीम यानी विषय तय करता है जिस पर पूरी दुनिया में काम किया जाता है। अब की बार यानी 2026 में थीम है गैर संचारी रोगों के लिए सुरक्षित देखभाल यानी सेफ केयर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नारा है जीवन भर सुरक्षित देखभाल, सेफ केयर फॉर लाइफ। इस थीम का महत्व भी हम आपको बता देते हैं। दिल की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर और सांस से जुड़ी पुरानी बीमारियां जो होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जिन्हें कहते हैं, इससे पीड़ित मरीजों को लंबे समय तक इलाज और दवाओं की जरूरत होती है। इस दौरान बार बार डॉक्टर बदलने या गलत दवाओं के सेवन से नुकसान होने का जोखिम जो है वो बढ़ जाता है। इस थीम से ये जो थीम है इसी जोखिम को कम करने में केंद्रित है यानी स्वास्थ्य की देखभाल करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।

मदन की बेला, इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। घर कार्यक्रम है घर आंगन। घर का आंगन एक ऐसी जगह जहां सिर्फ दीवारें नहीं होती, वहां होती हैं यादें, माँ की आवाज, बच्चों की हंसी, त्योहारों की रौनक, दादा नानी की कहानियां, रसोई से आती मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू। और इसी आंगन को आज हम थोड़ा और खूबसूरत बनाएंगे, बातों से, यादों से और पुराने सदाबहार गीतों से। आज की हमारी चर्चा में बहुत खूबसूरत रंग है, फैशन है, घर परिवार है, पर्यावरण है, खाना खजाना है, और इन सब के बीच याद करेंगे उन गीतों को। याद क्या, सुनवाएंगे हम आपको वो गीत जो आज भी दिल को छू लेते हैं।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम था मैं चुप रहूंगी। बातें जब घर परिवार की फैशन की चली रही है, फैशन देखिए, फैशन का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? नई साड़ी, नया सूट, नई ज्वेलरी, या फिर आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहना आज कुछ अलग लगना ही चाहिए। लेकिन फैशन केवल कपड़ों का नाम नहीं है, फैशन है अपने व्यक्तित्व को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना। 60 और 70 के दशक की महिलाओं को याद कीजिए, साड़ी का अपना आकर्षण था, बालों का जूड़ा, उसमें लगा गजरा, छोटी सी बिंदी, चूड़ियां और सादगी। और आज फिर वही पुराने अंदाज नए रूप में लौट रहे हैं, तो क्यों ना इस बार अपनी अलमारी को थोड़ा समझदारी से देखा जाए कि क्या है इस अलमारी के अंदर और

क्या ढूंढना चाह रहे हैं। तो क्यों ना इस बार हम देखें कि जो कपड़े लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए गए हैं उन्हें निकाला जाए कि क्या है उन कपड़ों के अंदर, और पुरानी साड़ी से या पुराने कपड़ों से हम क्या कर सकते हैं, कुशन कवर, बैग या बच्चों के लिए कोई उपयोगी चीज बना सकते हैं या नहीं। इसे कहते हैं फैशन के साथ पर्यावरण की चिंता। और अगर आप एक बार फैशन के साथ पर्यावरण की चिंता करने लगेंगे ना, तो देखिए मैं सच कह रही हूँ, आपको हर बार लगेगा कि अरे हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। तो आज हमारे श्रोताओं से सवाल भी यही है। अब हम चलिए पुरानी चीजों से क्या बनेगा, ये तो हम आपसे पहले भी पूछ चुके हैं, अब की बार हम पूछ रहे हैं कि साड़ी से जुड़ी आपकी यादगार कोई बात है तो हमें बताइए। आपके घर की सबसे पुरानी और सबसे पसंदीदा साड़ी कौन सी है ये भी बता सकते हैं। क्या आपकी माँ ने कोई आपको साड़ी दी थी, या दादी ने दी थी, या आपकी सासू माँ ने कोई साड़ी आपको दी थी जो आपको बेहद पसंद थी, और अगर आपने अपने फ्रेशर्स पार्टी में कोई साड़ी पहनी थी वो आपकी यादगार हो, और पुरुष साथी जो हमारे सुन रहे हैं प्रोग्राम वो बताएं कि ऐसी कौन सी याद है उनकी साड़ी की कि उन्होंने किसी को साड़ी खरीद कर दी थी, या कोई साड़ी ऐसी कोई भी याद कि किसी ने साड़ी पहनी वो आपको खूबसूरत लगी, साड़ी से एक जुड़ी कोई भी यादगार बात आप हमें आज के कार्यक्रम में भेज सकते हैं। हम आपकी ईमेल्स को शामिल करेंगे fmgoldga@gmail.com के जरिए, यानी आप हमें ईमेल भेजिए, साड़ी से जुड़ी कोई यादगार बात बताइए और भेज दीजिए ईमेल fmgoldga@gmail.com पर।

खामोशी फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और देखिए बात चली है फैशन की। अब कपड़े बदलने से फैशन बदलता है, लेकिन रिश्तों में थोड़ा प्यार बढ़ा देने से पूरा घर बदल जाता है। आज घर में सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, सब बिजी हैं, लेकिन क्या हमारे पास एक दूसरे के लिए समय है? कभी गौर कीजिए, बच्चा कुछ कहना चाहता है तो हम फोन में व्यस्त हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं तो बच्चा फोन में व्यस्त है, पति पत्नी के पास बात करने का समय नहीं है। और घर के बुजुर्ग अपनी पुरानी बातें लेकर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जो उन्हें सुन सके। इसलिए आज के घर आंगन में छोटी सी अपील करना चाहते हैं कि दिन में कम से कम 20 मिनट परिवार के नाम कीजिए, मोबाइल को एक तरफ रखिए, साथ बैठिए, पूछिए आज आपका दिन कैसा रहा। यकीन मानिए, कभी कभी यही एक सवाल रिश्तों में बहुत गर्माहट ला देता है। घर बड़ा हो या छोटा, फर्क इससे नहीं पड़ता, जहां रिश्तों में अपनापन हो वही घर सुंदर लगता है। और परिवार की बात हो तो एक और खूबसूरत गीत तो बनता ही है।

नया दौर फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले मोहम्मद रफी को। और बात देखिए ना, हमने पूछा था कि साड़ी से जुड़ी यादगार बात बताएं, तो हमें ईमेल्स मिल गई हैं। राजू अग्रवाल, केशव

प्रियांशु लिखते हैं चौधरी वास हिसार से लिखते हैं, वो लिखते हैं कि हमारी माँ माताजी 2017 में इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन उनकी साड़ी हमने संभाल रखी है। कुछ साड़ियों से रजाई वगैरह के कवर भी बना लेते हैं और अपनी पत्नी को सिर्फ एक साड़ी खरीद कर दी थी। साड़ी भारतीय पहनावा है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जगह साड़ी इस्तेमाल की जाती है। बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए साड़ी आज भी उतनी ही फेमस है, सुंदर है, लुभावनी है जितनी पहले थी, उतनी ही लुभावनी अभी आजकल की लड़कियों में साड़ी का फिर से प्रचलन आ चुका है। और एक और मेल हमें मिली है अफरोज शेख की नेमुआ सुपौल बिहार से कि हमारे गांव में आज भी पुरानी साड़ी को से ही त्योहार मनाते हैं, गोधरा बनाते हैं, जौ की बिछाने का काम करते हैं, मुझे पिंक कलर की साड़ी बहुत पसंद है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी यादें लिख रहे हैं। और एक रोहिणी से हमें नीलम जी की मेल मिली है, वो भी लिखती हैं कि साड़ी वैसे तो मैं नहीं पहनती हूं, लेकिन आजकल जो प्रचलन चला है उस वजह से मैंने कई साड़ियां खरीद ली हैं और अब तो रेडीमेड साड़ी भी आने लगी है। बिल्कुल सही कहा, अब तो ऐसी साड़ी आने लगी है कि बांधो और पहन लो। और पुराने फिल्मों में अगर आपको याद हो तो पुरानी हीरोइनें साड़ी ही पहना करती थी, गाना हो, नृत्य हो, कहीं जाना हो, पिकनिक तक पे आप देखेंगे कि अगर पिकनिक का भी सीक्वेंस था ना, पुरानी फिल्मों में साड़ी का सीक्वेंस आता था, हीरो के साथ अगर गीत गा रही है तो भी साड़ी में। याद कीजिए उस दौर को।

हम दम मेरे दोस्त फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन FM गोल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, बातें घर आंगन की। और देखिए, आप जो रसोई है ना हमारी, वो बहुत, उसमें बहुत सारी यादें होती हैं। चलिए रसोई से पहले आंगन की बात करते हैं। अपने घर की ही नहीं बल्कि उस बड़े घर की जिसे हम धरती माँ कहते हैं। पर्यावरण बचाने के लिए हम हमेशा जो बड़े बड़े अभियान खोजते हैं ना, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हमारी रसोई, हमारा घर ही इसकी शुरुआत बन सकता है। प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े का थैला, पानी की बेवजह जो बहते हैं ना, पानी को नल चला के छोड़ देते हैं, उसे रोकिए। कमरे से निकलते समय लाइट बंद करना, बालकनी में 2 पौधे लगाना और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों को भी इन सारी आदतों में शामिल करना। अगर हर घर की महिला और पुरुष ये तय कर लेना कि हमें पर्यावरण का ध्यान रखना है, अपने घर को और थोड़ा पर्यावरण अनुकूल बनाना है, तो बहुत बड़ा असर इसका हो सकता है। तो पानी बचाएंगे, पहला संकल्प लें। दूसरा संकल्प लें, प्लास्टिक को कम करेंगे। तीसरा संकल्प लें, कम से कम 1 पौधे की जिम्मेदारी लें। और पौधे की बात निकली है तो क्यों ना फूलों और खुशियों से भरा और धरती का मुस्कुराता हुआ एक गीत हो जाए। और हाँ, मैं जाने से पहले, गीत सुनाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमने पूछा है आपसे एक प्रश्न कि साड़ी से जुड़ा आपका कोई यादगार किस्सा है, कोई यादगार बात है, तो हमें बताइए FM गोल GA@gmail.com पर।

जी हाँ, मौसम बीता जाए, देखिए ना कितना अच्छा मौसम है। इस मौसम में अगर आप पेड़ लगाएंगे ना तो वो बहुत ही आपको फल देगा। और ये गीत हम सुन रहे थे 2 बीघा जमीन से, लता मंगेशकर और मन्ना डे की थी आवाजें। और जी हाँ, अब हम घर आंगन के उस स्वादिष्ट हिस्से पर आ गए हैं जहाँ पकवान की, खाने की जो खुशबू है ना, वो सिर्फ भूख नहीं जगाती, यादें भी जगाती है। दादी की दाल, नानी के हाथ के परांठे, माँ के हाथ की बनाई खीर और त्योहारों पर बनने वाले पकवान। आजकल रेसिपी के लिए मोबाइल पर हजारों वीडियो मिल जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की रेसिपी कहीं खो ना जाए? जी हाँ, आपकी सासू माँ, आपकी माता जी, आपकी दादी जी, आपकी फुफिया सास, आपकी बुआ सास, ऐसी पुरानी पुरानी रेसिपीज और खाने की चीजें जो आपको बताती है ना, वो रेसिपी अगर खो गई ना फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो चीजें यूट्यूब या गूगल पर नहीं मिलेंगी। तो एक बहुत प्यारा काम कीजिए, किसी भी महिला से उनकी खास रेसिपी पूछिए, लिखिए, सामग्री लिखिए, बनाने की विधि लिखिए, साथ में ये भी लिखिए रेसिपी किसकी है। एक डायरी मेंटेन कीजिए, हो सकता है कुछ साल बाद वही डायरी आपके परिवार के लिए किसी खजाने से कम ना हो। और एक छोटी सी रसोई टिप आज के प्रोग्राम में हम आपको देंगे, सब्जियों के छिलकों या बची हुई सामग्री को तुरंत कूड़े में डालने की बजाय देखिए कि क्या उसका कोई उपयोग हो सकता है या नहीं, क्योंकि भोजन की बर्बादी को रोकना भी तो पर्यावरण की सेवा है। और जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था उसका एक मेल और हमें मिला है, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांतिनगर सोनियापत सोनीपत से। ये लिखते हैं कि बहुत अच्छी बातें इस कार्यक्रम में चल रही हैं, साड़ी हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है और साड़ी ही नारी का श्रृंगार है, और आज के दिवस की इन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन मुखी जी, और हम उन सभी मेल्स को इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं जो आप भेज रहे हैं। ये लिख रहे हैं राम बालक दास जी, कोलकाता से लिखते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है और इन्हें भी साड़ी पहना, देखिए कोलकाता में तो साड़ी का अलग ही रिवाज है, इन्हें भी साड़ी बहुत पसंद है और इन्हें भी वो साड़ियां याद हैं जो इन्होंने किसी को गिफ्ट करी हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है राम बालक दास जी। चलिए, साड़ी ऐसा है ना कि साड़ी आजकल दोबारा से रिवाज में जब आ ही गई है तो अगर आपके पास नहीं है तो खरीद लीजिए, और हमने तो आपसे पूछ ही लिया है कि आपकी कोई याद है तो हमें बताइए। और अब रसोई की दुनिया से और इस ईमेल की दुनिया से फिर से निकलते हैं संगीत की दुनिया में।

ब्लैक किड्स कैट फिल्म में, यानी ब्लैक कैट फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी को, और कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब बात करेंगे बुजुर्गों की। घर में बुजुर्ग हैं तो समझिए कि घर में एक चलता फिरता इतिहास मौजूद है। उनके पास कहानियां हैं, अनुभव हैं, पुराने गीत हैं, पुराने किस्से हैं और जीवन को समझने का अपना नजरिया है। लेकिन आज कई बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें सुविधा नहीं साथ और सम्मान भी चाहिए। कभी उनके पास बैठकर पुराने गाने सुनिए, पुरानी तस्वीरें देखिए और तस्वीरों पर चर्चा भी कीजिए, उन्हें बहुत खुशी होती है। उनसे पूछिए आपके समय में त्योहार कैसे मनाए जाते थे, उनकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, कौन सा हीरो या हीरोइन उन्हें पसंद है जिसे, और उसकी क्या अदा उन्हें पसंद है, कौन सा गीत पसंद है और आपकी माँ क्या अच्छा खाना बनाती थी। ऐसी बातचीत से पूरा परिवार अपनी जड़ों से जुड़ सकता है, क्योंकि वक्त की धूप में जो छांव बनकर साथ रहे वो बुजुर्ग हैं जो घर को घर बनाते हैं।

सीता और गीता फिल्म में आशा भोंसले और किशोर कुमार को आपने सुना। और अब बात हर उस महिला की जो घर संभालते संभालते अपने सपनों को भी संभालना चाहती है। आज महिलाएं घर से छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। कोई अचार बनाकर बेच रही है, कोई पापड़ बना रही है, कोई सिलाई कढ़ाई कर रही है, कोई ऑनलाइन पढ़ा रही है, कोई अपना छोटा सा बुटीक चला रही है। तो अगर आपके अंदर भी कोई हुनर है तो उसे छोटा मत समझिए। हुनर कभी छोटा नहीं होता, जरूरत है उसे पहचानने की और धीरे धीरे आगे बढ़ाने की। और हाँ, अपने लिए समय निकालना भी बहुत जरूरी है। हर महिला को हफ्ते में कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालना चाहिए। किताब पढ़ें, संगीत सुनें, पौधों के साथ समय बिताएं और अपनी सहेली से दिल खोल कर बात करें। खुश महिला ही अपने आसपास खुशियां बांट सकती है। तो हमने आज घर आंगन में बात की फैशन की, परिवार की, पर्यावरण की, खाना खजाने की, बुजुर्गों की और सबसे बढ़कर आपकी। याद रखिए, घर को सुंदर बनाने के लिए महंगे सामान की जरूरत नहीं, थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ी समझ चाहिए, थोड़ी हरियाली चाहिए, आपकी मुस्कुराहट चाहिए, खुशियां चाहिए और रसोई से आती अपनों की पसंदीदा खुशबू भी चाहिए। आंगन में पौधे हो, रसोई में खुशबू हो, रिश्तों में मिठास हो और चेहरे पर मुस्कान हो तो जिंदगी का हर दिन त्योहार बन जाता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और हम ईमेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने जो प्रश्न पूछा उसके जवाब आ रहे हैं। निर्मल देवी वास से लिखती हैं, हम हमेशा साड़ी पहनते हैं क्योंकि यही साड़ी हमारी संस्कृति की पहचान है। और रश्मि कपूरिया का मैसेज आया है, वैशाली से ही लिखती हैं, मैं तो बहुत साड़ी पहनती हूँ और मैं तो कई बार ऐसा होता है कई फंक्शंस में एक ही दिन में कई साड़ी चेंज कर लेती हूँ। मैं बहुत जल्दी साड़ी बदल कर नया रूप भी अर्पित कर लेती हूँ। और अभी गणपति उत्सव पर इन्होंने महाराष्ट्रीयन लुक की साड़ी पहनी थी और तीज उत्सव पे तीज लुक की साड़ी पहनी थी। बहुत अच्छी बात है अगर आप इस तरह से साड़ियां पहन लेती हैं तो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं दो रास्ते फिल्म से, और कार्यक्रम घर आंगन से मुझे यानी राधा पाठक को दे इजाजत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।

0: 당근.
1: 아프게 아스티트와 아프게 역대트와 세주라. 아프가 갈 앙근.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
1: हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत

0: के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कई दशकों से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहता था, लेकिन ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमीकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
0: इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची एच, H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित संशोधन इन औषधियों की अनधिकृत पहुंच और बिक्री से संबंधित खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, on one side, India's economy is growing, and on the other side, global trust in India is also growing. He said, despite the challenging global environment, India recorded a growth rate of 7.8%. Prime Minister said, at the same time, Japan's credit rating agency also upgraded India's sovereign rating. Mr. Modi said, every citizen of the country is working with a commitment to build a developed India. The Prime Minister said, India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and it is opening new opportunities for innovation, investment and growth.
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर

0: goal of Vikasit Bharat by 2047. Securities and Exchange Board of India Chairman Suhin Kanta Pandey has said that greater public awareness about the risks involved in derivatives trading is needed, as many retail investors continue to suffer losses even after 3 to 4 years of trading in the futures and options segment. Addressing the NABFID Annual Infrastructure Conclave 2026, Mr. Pandey highlighted the need for investors to understand whether they are prepared to participate in the derivatives market. Mr. Pandey said the securities market can play an important role in meeting India's growing infrastructure financing requirements by providing capital at different stages of an asset's life cycle. The Enforcement Directorate's Delhi zone has conducted search operations at 4 premises located across Delhi, Bihar, Jharkhand and Karnataka today. The search operations are being carried out in connection to a case related to a bomb attack on the RSS office in Ranchi in June this year. In Jammu and Kashmir, 2 terrorists were neutralized in a joint intelligence-based counter-terrorism operation launched in the Bratal area of Udhampur district today. Our correspondent reports that the operation was launched last night after security forces received confirmed inputs about the presence of terrorists in the area. The army said the operation was still in progress, with search and surveillance operations continuing in the area. Prime Minister Narendra Modi has shared an article written by former President Ramnath Kovind highlighting India's inclusive development trajectory. In the article, Mr. Kovind highlighted how India's growth story is increasingly bringing those who were previously unheard, unseen or underserved into the national mainstream. Prime Minister Modi has also shared an article written by athlete P.V. Sindhu in which she stated that India never lacked talent but often missed opportunities and pathways to realize big dreams. In a social media post, the Prime Minister noted that the article reflects on how the last 12 years have changed this, enabling a new generation of Indians not just to dream big but to turn those dreams into reality. Benchmark domestic equity indices were trading on a positive note in the afternoon session. The Sensex added 247 points to 74,583 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. 1:10 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का. एक ही फिल्म कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश.
2: दस लाख की लॉटरी मुझे.
3: फर्जी ऑफर से सावधान.
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
1: कार्यक्रम एक ही फिल्म में आप सभी सुनने वालों का, आप सभी श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूं. मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी. स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार. दोस्तों, कार्यक्रम है हमारा एक ही फिल्म और आप जानते ही हैं कि हर रोज हम आपके लिए चुनकर लाते हैं एक चुनिंदा फिल्म. और आज इसी कड़ी में लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए 1967 में आई एक ऐसी क्लासिकल फिल्म जो कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है. जी हाँ दोस्तों, वो एक ऐसी फिल्म जो कि उस दौर में अपने वक्त से आगे की सोच रखने वाली थी. एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी ये फिल्म. इस फिल्म की अगर हम बात करें तो इस फिल्म में प्रदीप कुमार, नरगिस, फिरोज खान, केएन सिंह, लीला मिश्रा, अनूप कुमार, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और अनवर हसन जैसे कलाकार थे और अपनी बखूबी उस कला से उन्होंने हर किसी को इस फिल्म में अचंभित भी किया. और अगर हम इस फिल्म के संगीत की बात करें तो शंकर जयकिशन के संगीत से सजी हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जी के संगीत रहे इस फिल्म में. और ये फिल्म जो है, ये फिल्म जैसे मैंने आपको बताया कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी. इसको डायरेक्ट किया सत्येन बोस ने. इस फिल्म में स्प्लिट पर्सनालिटी या कहें कि डिसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर जैसे बहुत ही एक संवेदनशील विषय को उन्होंने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सादगी के साथ पर्दे पर उकेरा. और इस तरह से उकेरा कि हर कोई देखने वाला

हैरान रह गया। तो दोस्तों करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत लता जी की आवाज में इस खूबसूरत से गीत के साथ, और जो ये आज की हमारी फिल्म है उस फिल्म का नाम है रात और दिन।

जी दोस्तों, फिल्म रात और दिन। रात और दिन, अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म में वरुणा जो कि ये किरदार निभाया है नरगिस जी ने, वो एक सीधी सादी और बहुत ही शांत स्वभाव की एक संस्कारी महिला है जिसकी शादी होती है प्रताप से, प्रताप यानी कि प्रदीप कुमार से। लेकिन शादी के बाद प्रताप ये देख के बहुत हैरान हो जाता है कि रात होते ही वरुणा की जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रात के वक्त वरुणा खुद को रीटा बना लेती है।

शराब पीती है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है, क्लब जाती है, और सबसे अजीब बात ये कि सुबह उठने पर वरुणा को अपनी रात की किसी भी हरकत का, किसी भी बात का जरा सा भी एहसास नहीं होता, बिल्कुल भी याद नहीं रहता। शादी के बाद में शुरुआत में प्रताप और उसका जो परिवार है वो समझता है कि जो अरुणा इस तरह का व्यवहार कर रही है तो जरूर कुछ ना कुछ भूत प्रेत का साया है, लेकिन कुछ वक्त बाद प्रताप को समझ में आता है कि भाई ये कुछ ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि ये तो कोई मानसिक बीमारी है। और जब प्रताप को ये पता चलता है तो वो लेकर जाता है उन्हें एक साइकाइट्रिस्ट के पास। डॉक्टर जांच करते हैं और पता चलता है कि वरुणा जो है वो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। सच्चाई सामने आती है और उसके बाद उनका इलाज होता है और पता चलता है कि जो वरुणा है उसके साथ बचपन में इस तरह का हादसा हुआ था कि उनकी माता और पिता के बीच में बहुत झगड़े होते थे और उसी वक्त में उनकी जो माँ का व्यवहार था उसने एक गलत तरीके से उनके दिमाग पर असर छोड़ा था और वही बचपन के जो हादसे थे वो घुटन के रूप में उनके अंदर रीटा नाम की एक दूसरी पर्सनालिटी को जन्म दिया। और धीरे धीरे इलाज होता है और सही इलाज मिलने पर और अपने उस पुराने अतीत के कड़वे सच का सामना करने के बाद वरुणा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और प्रताप के साथ मिलके एक खुशहाल जिंदगी जीती है और इस तरह से होती है फिल्म की हैप्पी एंडिंग। तो लीजिए दोस्तों सफर के इस अगले पड़ाव में सुनते हैं लता जी और मनाड़ी की आवाज में ये एक और खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म रात और दिन के बारे में। रात और दिन फिल्म जिसमें ये डबल रोल जो किया, जो डबल पर्सनालिटी वाला किरदार निभाया, वो निभाया अभिनेत्री नरगिस दत्त जी ने। और यही वो फिल्म थी जिसके जो उनके उन्होंने मतलब अपने एक्टिंग करियर से संन्यास ले लिया था, उसके बाद उन्होंने ये फिल्म को किया। और इससे जुड़ी हुई जानकारी हम तक पहुंचाई अजीत भावसर जी ने। लिखते हैं कि जो भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर ये साबित हुई और बहुत ही अनूठी कहानी थी इसकी। मदर इंडिया जो कि 1957 में आई थी, उसकी भारी सफलता और सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों से संन्यास ले लिया था। हालांकि उसके बाद उनके भाई जाफर हुसैन जो थे, उन्होंने नरगिस जी को बोला इस फिल्म में काम करने के लिए और नरगिस जी ने सुनील दत्त की सहमति के बाद दोबारा से कैमरे का सामना किया और ये उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। और इस बेहतरीन फिल्म के लिए उन्हें, जो इन्होंने इस तरह से डबल पर्सनालिटी का डबल रोल किया था, उसके लिए जब पहली बार ये फिल्म फेयर अवार्ड शुरू हुए थे तो पहला जो अवार्ड मिला वो नरगिस जी को मिला। भारतीय सिनेमा का पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जीता नरगिस दत्त जी ने। इस फिल्म से जुड़े और भी बहुत से किस्से हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक और ये खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज में।

जी दोस्तों, आप जो है कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म रात और दिन। ये फिल्म, जिस फिल्म के जो निर्माता हैं वो हैं जाफर हुसैन, जो कि नरगिस जी के भाई थे। शुरुआत में वो इस जो ये एक साइकोलॉजिकल जो फिल्म थी, इसको बनाने के लिए ऑस्कर विजेता निर्देशक सत्यजीत रे से वो बात कर चुके थे, और रे साहब भी इस फिल्म में काम करने के लिए दिलचस्पी ले रहे थे, लेकिन वक्त की कमी और उनका शेड्यूल जो था वो नहीं मिल पा रहा था, तो बात जो थी वो आगे नहीं पढ़ पाई। और बाद में इस फिल्म को निर्देशित किया सत्येन बोस ने। इस फिल्म में काम करने के लिए वो नरगिस जी के भी पास गए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, और वो पहले ही फिल्मों से दूरी बना चुकी थी, लेकिन सुनील दत्त जी के कहने पर उन्होंने इस फिल्म में काम किया। और देखिए क्या खूब फिल्म बनी। और अगर हम बात करें इस फिल्म के संगीत की, तो वो भी बहुत खूब था। संगीत के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में एक और खूबसूरत संगीत इसी फिल्म से।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हम बात कर रहे हैं फिल्म रात और दिन के बारे में। दोस्तों, अगर इंडियन सिनेमा में हम बात करें बहुत ही खूबसूरत मीठे संगीत की, शास्त्रीय संगीत और कमाल के दिनों वाले संगीत की अगर बात हो, तो 1967 की इस लैंडमार्क फिल्म रात और दिन का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, क्योंकि शंकर जयकिशन की इतनी खूबसूरत सी इस जोड़ी ने इस फिल्म के संगीत की जो जिम्मेदारी थी वो संभाली और हिंदी सिनेमा में इस खूबसूरत संगीत को दिया। और ऊपर से इस फिल्म में जो वरुणा का किरदार था, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब वरुणा तो नहीं, वरुणा और रीटा दोनों का जो किरदार था, उसकी फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को किस तरह से शास्त्रीय संगीत के रूप में और उसके साथ मॉडर्न संगीत को भी पिराया, उसके बाद उन्होंने ये संगीत तैयार किया, है ना, कमाल का संगीत तैयार किया। और फिल्मों के जो गीतों में शब्द हैं, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जी के जो बोल हैं, उन दोनों महान गीतकारों ने तो बस कमाल ही किया। मतलब हर गीत ऐसा है जो कि रूह तक उतर जाता है। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं इसी फिल्म से लता जी की आवाज में एक और दिल को छू लेने वाला ये नगमा।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम इनकी फिल्म के साथ और हम बात कर रहे हैं फिल्म रात और दिन के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं स्वर्ण सिंह गिर, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से, और पद्मा टॉकी नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह के साथ जुड़े हुए हैं। गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, ओसीता, गीता हमारे साथ जुड़े हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, वड़िंगकेड़ा पंजाब से मिंटू, थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। अजित भवसर जी हमारे साथ जुड़े हैं और लिखते हैं कि इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है और जिसका क्लाइमैक्स है वो हॉलीवुड की फिल्मों से लिया गया है, उससे प्रेरित है। द थ्री फेसेस ऑफ ईव जो कि 1957 में आई थी और अल्फ्रेड हिचकॉक की मरीन जो है उससे काफी ज्यादा ये प्रेरित है, और उसमें जो मरनी फिल्म में भी पैगी का जो किरदार है जो जिक्र किया गया है वो भी इसी तरह का किरदार था। बहुत खूब जानकारी अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुन्नौर से आदिल कुमार तस्दीक अली, मुजफ्फर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगला संदेश आया है हीरामणि वर्मा जी का, दतरंगी भट्टापारा से। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और ईशान, पूजा परिहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी बहुत खूबसूरत जानकारी हमें फिल्म की दी है। पहाड़गढ़ मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल, गुरमीत सिंह, नीता जी साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद हिसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीरोफर फातिमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से, और हरजिंदर सिंह भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचाया और इसको पहुंचाने वाले हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड, फजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशु, विशाल, लाड़ी, शालिनी, तिवांशी, वाणी और बी खेड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जीवन सिंह जी के साथ, और पूरा खेड़ा परिवार हमारे साथ जुड़ा है। संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया जुड़े हुए हैं हमारे साथ बागपत उत्तर प्रदेश से, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं ये हैं डीबी राणा जी नेहरू विहार दिल्ली से, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू हमारे साथ जुड़े हुए हैं निसार सलमानी के साथ, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशान नवानकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत मक्कर, भारत मक्कर के साथ, कमल सहानी पिंगावाला चौक गोरैया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो अगला संदेश है उसको हम तक पहुंचाने वाले हैं ग्राम नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से एक बार फिर से स्वर्ण

पिंगेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जलालाबाद वेस्ट से जुड़े हैं सुरेश गगनीजा पूनम गगनीजा के साथ में। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए सभी जो श्रोता हैं वो हमारे साथ जुड़े, और लालगिरी गोस्वामी जी भी जुड़े हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। इनके साथ हेमलता हीना और हर्षित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा खैर बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य, लाडो कोयल, पापा जी नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू, भाविका सिक्का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, और मैं यानी कि प्रीति अब आपसे लूंगी अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। छोड़े जाती हूँ आप सभी को एक खूबसूरत से गीत के साथ, फिर आपसे कभी मुलाकात होगी नए फिल्म, नए नगमे और अनसुने किस्सों के साथ। तब तक यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, सुनते रहिए अपना पसंदीदा शो एक ही फिल्म से। जाइएगा कहीं नहीं, 3 बजे एक बार फिर से हाजिर होंगी लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडी। तब तक के लिए अनुमति, नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर 1:40 होने को है। लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विच यशो भूमि विच सेमीकॉन इंडिया 2026 दा उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा विच 25 साल पूरे होने के संबंध में बीजेपी की महीना भर चलने वाली सेवा संकल्प मुहिम शुरू हो गई है। भारत अपनी 140 करोड़ आबादी लिए ऊर्जा सुरक्षा मुहैया कराने लिए दृढ़ संकल्प है। भारत ने दहशतगर्दा पनाह देने लिए पाकिस्तान की सख्त शब्दों से निखेधी की है। भारत से अफगानिस्तान विचकार 3 20-20 क्रिकेट मैचों की लड़ी का आखिरी मैच अज नवी दिल्ली विच खेडिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली के यशो भूमि विखे सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाली यह कानफ्रेंस भारत में सहयोग निवेश नवीनता और हुनर विकास को अगे बढ़ाने केन्द्रित है। इस मौके पर बोलदे श्री मोदी ने कहा कि एक पासे भारत की आर्थिकता बढ़ रही है तो दूजे पासे भारत में विश्वव्यापी भरोसा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है।
2: इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश का हर नागरिक एक विकसित भारत बनाने के संकल्प नाल काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तेजी नाल फैल रहा है।

0: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने एक महत्वपूर्ण मील पत्थर प्राप्त कर दिया। इस योजना हेठ पंजाब समेत देश भर तो 3 लाख तो वद लाभपात्रियों नूं रजिस्टर किया है। ये योजना विश्वकर्मा दे रवायती हुनरां नूं संस्थागत सहायता, आधुनिक साधन, हुनर अपग्रेडेशन अते बाजार विच विक्री लई मौके प्रदान करके अते उन्हां नूं अपनी आमदन वधाउण दे योग बना के मजबूत करने की कोशिश कर दी है। हुनर विकास अते उद्यमता मंत्रालय राही इस योजना हेठ हुण तक लगभग 24,50,000 रवायती कारीगर मुढली हुनर सिखलाई प्राप्त कर चुके हैं। 6 लाख तो वध कारीगरां नूं 5% सलाना दी रियायती ब्याज दर से 1 लाख रुपए तक दे कर्जे प्रदान किए गए हैं। इस तो इलावा डाक विभाग राही इन्हां कारीगरां नूं उन्हां दे घर तक 18 लाख तो वध आधुनिक औजार भी पहुंचाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट नाल आकाशवाणी खबरां लई जलंधर तो मैं राजेश बाली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अज जन्मदिन दुनिया भर तों शुभकामनावां मिल रही ने। सोशल मीडिया से इन्हां शुभकामनावां लई धन्नवाद प्रगट करदे आं श्री मोदी ने कहा कि अजे आशीर्वाद उन्हां दे दिल विच इक विशेष स्थान रखदे ने ते हर आशीर्वाद देश दे लोकां दी सेवा करन दे उन्हां दे इरादे नूं होर मजबूत करदा है। लोक सभा विच विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नूं वधाई दित्ती है। श्री गांधी ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र ते चंगी सेहत की कामना कीती। भारत ते अफगानिस्तान विचकार 3 20-20 क्रिकेट मैचों की लड़ी का आखिरी मैच अज शामी नवी दिल्ली विच खेडिया जाएगा। यह मैच शामी 7:30 बजे शुरू होगा। अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विच यशो भूमि विच सैमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा विच 25 साल पूरे होने के संबंध में बीजेपी की महीना भर चलण वाली सेवा संकल्प मुहिम शुरू हो गई है। भारत अपनी 140 करोड़ आबादी लई ऊर्जा सुरक्षा मुहैया कराने लई दृढ़ संकल्प है। भारत ने दहशतगर्दां नूं पनाह देने लई पाकिस्तान की सख्त शब्दों च निखेधी की है ते भारत अफगानिस्तान विचकार 3 20-20 क्रिकेट मैचों की लड़ी का आखिरी मैच अज शामी 7:30 बजे नवी दिल्ली च खेडिया जाएगा। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निज़ाम तेजी से भुसक पा रहा है और इख्तिरा, सरमायाकारी और तरक्की के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहा है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत ने सेमीकंडक्टर की वसीतर जरूरियात के लिए मुल्क भर में चिप डिजाइन करने की खातिर कम अज कम 200 स्टार्टअप और कंपनियों की मदद का हदफ रखा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी और खिदमात के 25 बरस मुकम्मल होने के मौके पर बीजेपी के मुल्क की सतह पर एक महातवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज हो गया है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम को आज 3 बरस मुकम्मल हो गए हैं। भारत ने अमरीका में 11 सितंबर के दहशतगर्दाना हमलों के जिम्मेदार दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराहम करने पर पाकिस्तान की तनकीद की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह किया। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में इश्तराक, सरमायाकारी, इख्तिरा और भारत में हुनरमंदी के फरोग पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक तरफ भारत की मईशत तरक्की कर रही है और दूसरी तरफ भारत पर आलमी एतमाद में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि चैलेंज भरे आलमी माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की शरह तरक्की दर्ज की है। वजीर आजम ने कहा कि इस वक्त जापान की क्रेडिट दर्जाबंदी एजेंसी ने भी भारत की सॉवरेन दर्जाबंदी को बेहतर किया है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क का हर शहरी एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के अज़्म के साथ काम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निज़ाम तेजी से वसत पा रहा है और ये इख्तिरा, सरमायाकारी और तरक्की के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहा है।
3: इसी सितंबर में ही

0: जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर सनत के लिए एक पसंदीदा मकाम बनने की खातिर हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिल भरोसा मैन्युफैक्चरिंग मकामात तलाश कर रही है। जनाब मोदी ने उजागर किया कि मोहाली और सूरत में हाल ही में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में कमर्शियल पैदावार का आगाज हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क के लिए इस मकाम तक पहुंचना आसान नहीं है। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में हाल ही में मुनक़िद हुई ब्रिक्स सरबराह मीटिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस सरबराह मीटिंग की कामयाबी के साथ मेजबानी की, जिसमें हर मेंबर मुल्क के इत्तेफाकी राय के साथ नई दिल्ली एलामिया मंजूर किया गया। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कई दहाइयों से भारत सेमीकंडक्टर सनत कायम करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन यह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जेर क़यादत ही मुमकिन हो पाया। उन्होंने कहा कि अब बुनियाद कायम कर ली गई है और अगला कदम सेमीकॉन 2.0 के जरिए सनत कायम करना है, जिसमें 6 अहम सतूनों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तकरीबन 200 स्टार्टअप और कंपनियों को भारत में चिप डिजाइन करने के सिलसिले में मदद फराहम करने का निशाना रखा है। सेमीकॉन इंडिया 2026 में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैनुल अक्वामी कंपनियां और 50 से ज्यादा मुल्कों के मंदूबीन शिरकत कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी और खिदमात के 25 बरस मुकम्मल होने के मौके पर आज से बीजेपी के मुल्क की सतह पर एक महातवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज हो गया है। सेवा संकल्प अभियान जो आइंदा माह की 17 तारीख तक जारी रहेगा, इसका पहला दिन सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसके तहत मुल्क भर में खून अत्या करने के कैंप लगाए जाते हैं। इस मौके पर बाद में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने कहा कि मुल्क भर से पार्टी वर्कर खून अत्या करने के इन कैंपों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जेर क़यादत शहरियों की जिंदगी में यकसर तब्दीली आई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी के आज 25 बरस मुकम्मल हुए हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है। आज हम खसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान के तहत किस तरह दफा 370 की मनसूखी के जरिए एक मुल्क एक आईन के नजरिए को फरोग मिला, इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश कर रही हैं।
0: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
2: नरेंद्र मोदी का यह बयान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में आईनी तब्दीली की अक्कासी करता है। दफा 370 की मनसूखी से खित्ते में इंतजामी और सियासी तरीक़ेकार में एक अहम तब्दीली की भी अक्कासी होती है। शाहराहों से टनल्स तक और रेलवे पुलों से मुल्क के बाकी हिस्से से बेहतर कनेक्टिविटी तक जम्मू कश्मीर ने बुनियादी ढांचे में खातरख्वाह पेशरफ्त का मुशाहिदा किया है। 2019 के बाद से बुनियादी ढांचे, सियाहत, सरमायाकारी और हुक्मरानी के सिलसिले में नुमाया पेशरफ्त हुई है। मौजूदा हुकूमत इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम कर रही है। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज वज़ीर-ए-आज़म को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सदर जमहूरिया ने गुज़श्ता 25 बरस में जनाब मोदी की गैर मामूली अवामी खिदमात और मुल्क की तामीर में उनके वीरां कद्र तावुन की सताइश की। नायब सदर ने कहा कि जनाब मोदी की बसीरत अफरोज क़यादत के तहत भारत दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई अहम मईशतों में शामिल है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन साल 2023 में इस स्कीम का आगाज किया था, जिसका मकसद 18 मुतालिका तिजारत से मुंसलिक रिवायती फनकारों और दस्तकारों को शुरू से आखिर तक मदद फराहम करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पीएम विश्वकर्मा स्कीम ने एक अहम संगे मेल हासिल किया है और इस पहल के तहत 30 लाख मुस्तफीदीन का इंदराज

0: हो चुका है। इस स्कीम का मकसद विश्वकर्मा के रिवायती हुनर को मुस्तहकम करते हुए उन्हें इदारा जाति मदद, जाति साजो सामान, कर्ज तक रिसाई, हुनरमंदी के फरोग और बाजार राब्तों के सिलसिले में मदद फराहम करना है ताकि उनके आमदनी में इजाफा हो सके। हुनरमंदी के फरोग और कारोबार की वजारत के जरिए अब तक तकरीबन 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी हुनर की तरबियत फराहम की जा चुकी है। कर्ज की सहूलत के तहत 6,00,000 से ज्यादा विश्वकर्माओं को 5% सालाना की रियायती शरह सूद के हिसाब से 1,00,000 रुपए तक के कर्ज फराहम किए जा चुके हैं। दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: डायरेक्टर जनरल न्यूज राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली की आकाशवाणी के इहाते में अफसरान और अमले को स्वच्छता अहद दिलाया। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल न्यूज एस सुब्रमण्यम भी मौजूद थे। भारत ने अमरीका में 11 सितंबर के दहशतगर्दाना हमलों के जिम्मेदार पाकिस्तान में कायम दहशतगर्दों के कैंपों और अलकायदा कयादत के दरमियान बराह रास्त राबते का हवाला देते हुए दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराहम करने पर पाकिस्तान की सख्त नुक्ताचीनी की है। मर्दों के क्रिकेट में आज भारत दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 बैन अल-अक़वामी सीरीज का आखिरी मैच खेलेगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत ने पहले 2 मैचों में शानदार जीत के साथ सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निज़ाम तेजी से बुझत पा रहा है और ये इख्तिरा सरमायाकारी और तरक्की के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहा है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत ने सेमीकंडक्टर की वसीत जरूरियात के लिए मुल्क भर में चिप डिजाइन करने की खातिर कम अज कम 200 स्टार्टअप और कंपनियों की मदद का हदफ रखा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी और खिदमात के 25 बरस मुकम्मल होने के मौके पर बीजेपी के मुल्क की सतह पर एक महातवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज हो गया है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम को आज 3 बरस मुकम्मल हो गए हैं। भारत ने अमरीका में 11 सितंबर के दहशतगर्दाना हमलों के जिम्मेदार दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराहम करने पर पाकिस्तान की तनकीद की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Semicon India 2026 in New Delhi, says India's semiconductor ecosystem expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Union Minister Ashwini Vaishnav says government has set a target to support 200 startups and companies to design chips in India across spectrum of semiconductor requirements. BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan begins today to mark Prime Minister Narendra Modi's 25 years of public life and service. PM Vishwakarma scheme completes 3 years today. India slams Pakistan for providing permissive environment for terrorists responsible for September 11 attacks in the United States. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in last match of T20 international series in New Delhi this evening. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated Semicon India 2026 at Yashobhumi in New Delhi. The three-day conference is focusing on advancing collaboration, investment, innovation and talent development in India. Speaking on the occasion, the Prime Minister said India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and it is opening new opportunities for innovation, investment and growth.
3: भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
2: Mr. Modi said, on one side, India's economy is growing, and on the other side, global trust in India is also growing.

0: www.rajivkumar.in. Director General of News Services Division, Akashwani, Rajiv Kumar Jain, administered the Swachhata Pledge to officers and staff at the premises of Akashwani in New Delhi today. Additional Director General News, S. Subramanian, was also present on the occasion. The pledge was administered as part of the ongoing Swachhata Hi Seva 2026 campaign, being observed across the country from today till the 2nd of next month. In men's cricket, India will play the final match of the three-match T20 international series against Afghanistan at the Arun Jaitley Stadium in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. At the stock markets, the Sensex was trading nearly flat, while the Nifty was trading moderately higher during the afternoon session today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates SemiCon India 2026 in New Delhi, says India's semiconductor ecosystem expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Union Minister Ashwini Vaishnav says government has set a target to support 200 startups and companies to design chips in India across spectrum of semiconductor requirements. BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan begins today to mark Prime Minister Narendra Modi's 25 years of public life and service. PM Vishwakarma scheme completes 3 years today. India slams Pakistan for providing permissive environment for terrorists responsible for September 11 attacks in the United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
2: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
2: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन

0: लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग 8 बिलियन डॉलर का था, जबकि सेकंड फेज का 13.5 बिलियन डॉलर तक का हमने तय किया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
0: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
4: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति खुशहाली समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खाव वो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो, कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
3: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृहनगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि

0: प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
1: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
0: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
2: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रूपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमरीकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरूआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
3: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमरीका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार

0: दार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। श्री हरीश ने आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें सहायता, वित्त पोषण, सहयोग और शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
1: ड्रेनिंग दिस स्वैम्प दैट प्रोवाइडेड एन
2: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है, जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर न थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Der Segment des National News Service 24/7 Ikanam Program la ngen chigut bin Mirim Vivi ke du Akashvani Kargil din waqs bungi mi bajangiz nafet son su kasata NCERT Gralikam la khonut kan sponsor program playing in mazat umang

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आइए हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन जी ने। लिखते हैं, पेड़ हमें जीवित रहने के लिए जरूरी कई लाभ प्रदान करते हैं जिनमें स्वच्छ हवा, साफ पानी, छाया और भोजन शामिल हैं। वे हमें आशा और अंतर्दृष्टि भी देते हैं और दृढ़ रहने का साहस भी। पेड़ हमें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश भेजा है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों हम पेड़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपका ये संदेश बहुत प्रासंगिक है। और हमें अगला संदेश मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीशोरी पूजा और पायल जी का, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश। लिखते हैं, नदी का सफर हमने सुना, कहानी रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभप्रद लगी। शिकायत, मैं काफी दिनों से मेल कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरा कोई भी मेल नहीं पढ़ा गया है। क्या आपको मेरा मेल नहीं मिलता है? जी, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए जैसे ही आपका मेल हमें मिला हमने तुरंत शामिल कर लिया है। कई बार विलम्ब जरूर हो जाता है क्योंकि हमें सभी श्रोताओं के संदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव खिंदासर तहसील खोलायत जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी, मेन रोड तेलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं हम इस सप्ताह पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की अनेक लोक कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण से जुड़े मनोरंजक लेकिन उपयोगी संदेशों को आपके सामने लाना। प्रिय श्रोताओं, आज हम रूस में प्रचलित एक अनोखी मान्यता के बारे में बात करेंगे। रूस के जंगलों में रहने

वाले प्राचीन काल के लोगों की एक मान्यता थी। उनके जंगल का कोई रहस्यमय रखवाला है और उस रखवाले का नाम है लेशी। मैं आपके लिए दोहरा दूं, उसका नाम है लेशी। लोग कहते हैं लेशी न देवी है न देवता है, लेकिन वो एक रहस्यमय पात्र है और जंगल का असली मालिक वही है। लेशी लोगों की कल्पना द्वारा गढ़ा हुआ पात्र है। श्रोताओं, लेशी को पात्र मानकर रूस में बच्चों को बहुत सारे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मजेदार संदेश दिए गए हैं। लेकिन कैसे संदेश, आइए जानते हैं। वहां के जंगलों में पुराने लोग और माता पिता अपने बच्चों को लेशी की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं, जंगलों को यदि तुम स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाओगे तो लेशी तुम्हें सजा देगा। यदि तुम जंगल में कहीं आग जलाकर छोड़ दोगे तो सावधान, कोई देखे या नहीं देखे लेशी तुम्हें देख लेगा। अगर तुम पशु पक्षियों को सताओगे, उन्हें तंग करोगे तो लेशी तुम्हें भी तंग करेगा। माता पिता बताते हैं, लेशी बुरा नहीं है, वो सबको प्यार करता है, लेकिन जंगल प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, जंगल के किनारे रहने वाले गांवों में यदि बच्चे ऊंची आवाज में बात करें तो माता पिता या दादा दादी कहते थे, ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ, रात को पेड़ सोते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, और जब उन्हें तकलीफ होती है तो लेशी को भी बुरा लगता है। रात को घरों में बच्चे पूछते हैं, लेशी कैसा दिखता है, तो लोग अपनी अपनी कल्पना से पुरानी किंवदंतियों के अनुसार बताते हैं, लेशी कभी कभी पेड़ जैसा विशाल दिखता है तो कभी घास जितना छोटा। जब पेड़ से बात करता है तो पेड़ की तरह विशाल हो जाता है, जब किसी घास को मित्र बनाता है तो घास की तरह छोटा हो जाता है, कुल मिलाकर वो बहुरूपिया है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस के घने जंगलों में। ऐसे जंगल जहाँ पेड़ इतने विशाल हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती है। कल्पना करें कि एक जंगल में कुछ लोग गए, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ हैं, पेड़ों को काटने के लिए आरियाँ हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाभ कमाना है। तो सवाल है, ऐसे में लेशी क्या करेगा, वो तो जंगल का रखवाला है, कैसे जंगल को बचाएगा। आइए सुनते हैं उस मान्यता के अनुसार लेशी क्या करेगा। वो उन लोगों को जंगल में भटका देगा और उस जगह पर पहुंचने ही नहीं देगा जहां जाकर वे पेड़ों को काटना चाहते हैं। वो प्रकार प्रकार का रूप धारण करेगा और उन लोगों को कई ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनसे उन पेड़ों तक पहुंचा ही ना जा सके। लेशी उन्हें तब तक चकाता रहेगा जब तक वे परेशान होकर पश्चाताप न कर लें, और जब वे समझ जाएं कि उन्होंने गलत किया है, लेशी उनका प्यारा दोस्त बन जाएगा और जंगल से बाहर निकलने और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद करेगा, या उस रास्ते से ले जाएगा जहां काटने के लिए सूखे पेड़ हों। तो श्रोताओं, एक प्रश्न और सुनिए, यदि कोई बस मनोरंजन के लिए शिकार करने जाएगा तो लेशी क्या करेगा। तो यहाँ भी लेशी शिकारी को खूब परेशान करेगा, वो कई पशुओं का रूप धारण करेगा ताकि शिकारी उसका पीछा करें और असली पशु बच जाएं। तो साथियों, ये थी रूस की प्राचीन किंवदंती। है तो काल्पनिक, लेकिन कोई संदेह नहीं है कि ये बड़ी मजेदार और पर्यावरण संरक्षण का ठोस संदेश देती है। कितनी सुंदर बात है, आज विज्ञान हमें बताता है कि जंगल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने, जल चक्र को बनाए रखने और असंख्य जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सदियों पहले लोग, जब शायद विज्ञान की इन शब्दावलियों को भी नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, किंवदंतियों में कहा, लोक कथाओं में कहा, जंगल का भी एक रक्षक है। तो आइए अंत में सुनते हैं कि प्यारा और सबका मित्र लेशी उमंग कार्यक्रम में क्या कहना चाहता है। लेशी कह रहा है हम सबको कि जंगल में प्रवेश करो तो उसके मालिक बनकर नहीं, अच्छे अतिथि बनकर जाओ, जंगल तुम्हारी बड़े प्यार से पूरी आवभगत करेगा। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको लेशी की कहानी, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का मजेदार प्रश्न, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा आज का शैक्षिक कार्यक्रम है विश्व शिक्षक रविन्द्र नाथ ठाकुर।

0: रविन्द्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविन्द्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविन्द्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবীর সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में

0: उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
1: देश ने मनाई रविन्द्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविन्द्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
0: रविन्द्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्र

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905 अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणे बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।

0: रविन्द्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविन्द्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविन्द्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविन्द्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
1: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविन्द्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविन्द्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविन्द्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं। जहां सीखने की आजादी है, अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ ने कहा था,
3: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
3: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूँ। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
3: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का

0: का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सभी आपको बता दें से कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे प्रोग्राम अंदाजे नजर। 4 आप सुनेंगे हमारा एक खसूसी मुख्तसर प्रोग्राम स्वच्छता ही सेवा है। 4:05 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो समझिए था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से ही नशर

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप असदुल्ला से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 का आगाज किया है। उन्होंने कहा है कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निज़ाम तेजी से वसत पा रहा है और इख्तिरा सरमायाकारी और तरक्की के लिए नए इम्कान पैदा कर रहा है। भारत ने नामनिहाद पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरक कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को उस भारतीय इलाके के ताल्लुक से माहदे करने का कोई इख्तियार नहीं है जिस पर उसने जबरन और गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के दहशतगर्दाना हमलों के जिम्मेदार दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराहम करने पर पाकिस्तान की तनकीद की है। अमरीका के फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार शरह सूद में इजाफा किया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह किया। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में इश्तराक, सरमायाकारी, इख्तिरा और भारत में हुनरमंदी के फरोग पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक तरफ भारत की मईशत तरक्की कर रही है और दूसरी तरफ भारत पर आलमी एतमाद में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि चैलेंज भरे आलमी माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की शरह तरक्की दर्ज की है। वजीर आजम ने कहा कि इस वक्त जापान की क्रेडिट दर्जाबंदी एजेंसी ने भी भारत की सॉवरेन दर्जाबंदी को बेहतर किया है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क का हर शहरी एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के अज्म के साथ काम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निजाम तेजी से वसत पा रहा है और ये इख्तिरा सरमायाकारी और तरक्की के लिए नए इम्कान पैदा कर रहा है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर सनत के लिए एक पसंदीदा मकाम बनने की खातिर हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिले भरोसा मैन्युफैक्चरिंग मकामात तलाश रही है। जनाब मोदी ने उजागर किया कि मोहाली और सूरत में हाल ही में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में कमर्शियल पैदावार का आगाज हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क के लिए इस मकाम तक पहुंचना आसान नहीं है। अपने खिताब में वजीर आजम ने नई दिल्ली में हाल ही में मुनक़िद हुई ब्रिक्स सरबराह मीटिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस सरबराह मीटिंग की कामयाबी के साथ मेजबानी की जिसमें हर मेंबर मुल्क के इत्तेफाक राय के साथ नई दिल्ली एलामिया मंजूर किया गया। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि कई दहाइयों से भारत सेमीकंडक्टर सनत कायम करने का ख्वाहिशमंद था।

लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर-ए-क़यादत ही मुमकिन हो पाया। उन्होंने कहा कि बुनियाद कायम कर ली गई है और अगला कदम सेमिकॉन 2.0 के जरिए सनद कायम करना है, जिसमें 6 अहम सुतूनों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तकरीबन 200 स्टार्टअप और कंपनियों को भारत में चिप डिजाइन करने के सिलसिले में मदद फराहम करने का निशाना रखा है। सेमिकॉन इंडिया 2026

अक्षय जी पुरी ने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता होकर फिल्मी शायकीन के लिए, फिल्मी नाजरीन के लिए बेइंतहा खूबसूरत नगमे दिए, वो नगमे कि आज भी हमारे जहन दिल में ताजा है।

फिल्मी दुनिया को बेहतरीन नगमा देने वाला ये शायर हसरत जयपुरी, जिसका नाम था 17 सितंबर 1999 को 77 साल की उम्र में मुंबई में इंतकाल कर गए और अपने पीछे छोड़ गए अपनी उन खूबसूरत लम्हात की वो फहरिस्त जो कभी भी जब जब जिक्र होगा फिल्म इंडस्ट्री में नगमा निगारों का हसरत के बगैर मुकम्मल नहीं होगी। आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं उन्हीं के नगमात के साथ।

0: आप सुन रहे थे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फिर डिश पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम अंदाजे नजर।
1: ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के प्रोग्राम अंदाजे नजर में आप सबका इस्तकबाल है। आज के प्रोग्राम का मौजू है उर्दू अफसाना 21वीं सदी में। इस मुजाकरे के शुरका हैं प्रोफेसर इब्ने कवल साहब, शोबे उर्दू के सदर। आप मुहक्किक भी हैं, शायर भी हैं, अफसाना निगार हैं, नाकिद हैं, ड्रामा नवीस हैं और आपके कई अफसानवी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। मुझे लगता है कि आज की इस महफिल के लिए सबसे मौजू तरीन शख्स यही हैं। दूसरी एक बड़ी शख्सियत जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है वो है डॉक्टर खालिद अशरफ साहब। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज करोड़ी मल कॉलेज में उर्दू दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं। आपकी भी बहुत सी किताबें शाया हो चुकी हैं, जिसमें अजमी दहलवी, हयात नावल निगारी, बर्रे सगीर में उर्दू नावल और अफसाने पर आपका बहुत काम है। आपकी किताब दो जिल्दों में बर्रे सगीर में उर्दू अफसाना शाया हो चुकी है। ख्वाजा अहमद अब्बास पर भी आपने एक मोनोग्राफ लिखा है और फसाने मंटो के और फिर बयां अपना ये किताब भी आ चुकी है। और आज के इस मुजाकरे की नाजिम मैं खुद डॉक्टर शाहीना तबस्सुम, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की इवनिंग कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ। और हम इस वक्त आपके सामने जिस मौजू पर बात करेंगे उर्दू अफसाना 21वीं सदी में, आप दोनों का मैं इस्तकबाल करती हूँ। इसके साथ ही हम लोग अपने सामईन को ये बताना चाहेंगे कि 21वीं सदी और 20वीं सदी के अफसाने, दोनों सदियों में अफसाने लिखे गए हैं, उनमें ऐसा क्या फर्क है, उनके इम्तियाज किस तरह से अलहदा हैं कि उनको हम बाहम दिगर अलहदा करते हुए भी 21वीं सदी के अफसाने की मुनफरिद शनाख्त बता सकते हैं। आप हजरात इस पर कुछ रोशनी डालें कि वो क्या इम्तियाजात हैं जो 21वीं सदी के अफसाने को 20वीं सदी के अफसाने से अलग करते हैं।
2: देखिए डॉक्टर शाहीना, ये मौजू खासा वसी है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उर्दू अफसाने की तारीख भी एक सदी से ज्यादा अरसे से गुजर चुका है, इसे प्रेमचंद से लेके आज तक। और इस सदी में मौजूई एतबार से, हैती एतबार से मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आई हैं। इसे अदवार में बांटना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए एक फ़नकार जो है, जो अगर 20वीं सदी में पैदा होता है और वो लिखना शुरू करता है 20वीं सदी में, उसकी उम्र का तवील हिस्सा 20वीं सदी में गुजरता है, तो वो 21वीं सदी यानी आइंदा सदी में भी रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके मौजूआत में, उसलूब में वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ होती रहती हैं। आपने जैसा कि मौजू का तयन किया है कि 21वीं सदी में उर्दू अफसाना, तो हम उर्दू वाले असल में कुछ इस तरह की हदबंदियाँ करते हैं जब मौजूआत तय करते हैं कि 1857 से पहले का अदब, 1857 के बाद का अदब, 1947 से पहले का अदब, 1947 के बाद का अदब, या 20वीं सदी का अदब और 21वीं सदी का अदब। मेरे ख्याल से ये जो हदबंदियाँ हैं ये अदब के लिए मुनासिब नहीं लगती, क्योंकि मैं अगर 20वीं सदी के अवाखिर में मैंने लिखना शुरू किया और 21वीं सदी में भी मौजूद हूँ, लिख रहा हूँ, तो ये तो नहीं है कि 21वीं सदी आते ही मेरा मौजू भी बदल जाएगा, उसलूब भी बदल जाएगा।
1: जी, ये तो नहीं।
2: तो ये तो है। तो इस वक्त जो है, मैं एक बात आपसे अर्ज करूँ कि इस वक्त मेरा ख्याल है

0: के तीन पीढ़ी के लिखने वाले हैं, तीन नस्लों के 21वीं सदी में। एक वो जो सन 47 के बाद जिन्होंने लिखना शुरू किया था, जो बुजुर्ग हैं जैसे काजी अब्दुल सत्तार की उम्र के लोग हैं, उसमें जोगेंद्र पाल गुजर गए, 21वीं सदी में उनका इंतकाल हुआ है। कुरतुल्लैन हैदर 21वीं सदी में इंतकाल हुआ है। इकबाल मजीद मौजूद हैं, काजी अब्दुल सत्तार मौजूद हैं, और उनके हमूर कुछ और लोग भी हैं।
1: ये ज्यादातर 20वीं सदी वाले
0: लिख रहे हैं, 20वीं सदी वाले, लेकिन 21वीं सदी में भी लिख रहे हैं
1: जी,
0: 21वीं सदी में भी लिख रहे हैं। एक वो हैं जिन्होंने 8वीं दहाई में लिखना शुरू किया, जैसे सलामुद्दीन रज़ाक, अनवर कमर, अनवर खान, शफाक, अब्दुल समद, सैयद मोहम्मद अशरफ, तारिक सतारी, इन लोगों ने लिखना शुरू किया और वो आज भी लिख रहे हैं। और एक बिल्कुल वो हैं जिन्होंने पिछले दो दहाइयों में लिखना शुरू किया,
2: ताज़ा
0: जिन्हें आप 21वीं सदी के से कहते हैं, जैसे अहमद सगीर हैं, और इसमें जो नौजवान लड़के हैं जैसे हमारे यहाँ नूरैन हैं, और भी इस तरह के कुछ नाम।
1: ये तो पूरी तरह से 21वीं सदी के,
0: 21वीं सदी के, तो ये है ना, ये पूरी तरह से 21वीं सदी के हैं।
1: तो वही मैं कह रही हूँ कि ऐसे उन लोगों की क्या अलहदा शनाख्त कैसे बनी?
0: नहीं, शनाख्त देखिए अभी वो अभी इब्तदाई स्टेज में, इब्तदाई स्टेज
1: अभी दो दहाइयां में,
0: अभी जो है वो अपने कुदमा से सीख रहे हैं। लेकिन अभी जो इस वक्त जो अफसानवी अदब पर जो लोग कहना चाहिए हावी हैं, या जिनके नाम नुमाया हैं, मैं कहूँ तो उसमें वही लोग हैं जो 20वीं सदी के अवाखिर में जिन्होंने लिखना शुरू किया है, यानी 9वीं दहाई में, 10वीं दहाई में, या फिर अब वो 21वीं, जिनकी उम्र तकरीबन 50 और 55 के करीब है, इस तरह के लोग। अब आप देखिए कि बम्बई में इस वक्त सलामुद्दीन रज़ाक भी लिख रहे हैं, और उसी के साथ के जैसे वो थे अनवर कमर, अनवर खां, मुश्ताक मोमिन, अली इमाम नकवी, मीम नाग, ये इस तरह, या बिहार में शफक ने लिखे, अब्दुल समद ने लिखे, और बहुत से इस तरह के लोग हैं, हुसैन उल हक हैं। तो ये लोग लिख रहे हैं, इनके मौजूआत में देखिए, अब ये मौजू का अगर हम देखें, या है मौजू जो प्रेमचंद का था उससे तकरीबन मिलता जुलता तरक्की पसंदों का था, फिर उससे बिल्कुल अलग जदीद का था, अब वो आया एक मावाद जदीद। लेकिन मावाद जदीद एक सिर्फ तर्ज फिक्र है, कोई ऐसे मावाद जदीद कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन मौजू के एतबार से, हैत के एतबार से आज का जो अफसाना निगार है 21वीं सदी का, वो अपने पुराने लोगों से सबसे इस्तफादा कर रहा है। उसके यहाँ कहानी भी है, कहानीपन भी है। ये हमारे आपके जो मेहमान हैं डॉक्टर खालिद अशरफ साहब, इन्होंने 1,000 सफ़े की दो जखीम जिल्दें बर्रे सगीर में उर्दू अफसाना, मेरे ख्याल से ये, मैं तो खुश तख्लीककार हूँ, ये और ज्यादा बेहतर अंदाज में बात कर सकेंगे।
1: ये जो अभी आपने ये कहा कि मौजू के, सिर्फ मौजू के एतबार से नहीं, मैं कह रही थी कि उसमें सभी, और मौजू देखिए बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं। अभी अहमद सगीर का एक अफसाना आ रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट लिखा गया है, पहचान पत्र। मुझे लग रहा है 20वीं सदी में तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। आज जो पहचान पत्र की अहमियत है, क्योंकि ये 21वीं सदी का मौजू है, ये अभी का मौजू है ताज़ा, इससे पहले पहचान पत्र या आइडेंटिफिकेशन पे कुछ इस तरह के अफसाने नहीं लिखे गए।
0: माफ कीजिएगा, इससे पहले तारिक छतारी का अफसाना आया नेम्पलेट, वो 20वीं सदी में लिखा गया। हाँ, वो भी वो बिल्कुल पहचान पत्र की तरह उसका आया, सलाउद्दीन नय्यर का आइडेंटिटी कार्ड,
1: वो। लेकिन अब जो ये पहचान पत्र, जिस जैसे मौजू बदलते हैं, ये मौजू हमारे 20वीं सदी के शुरू में नहीं था ये मौजू, तो ये लिहाज मौजू वक्त के लिहाज से बदलते रहते हैं।
2: देखिए एक दो चीजें मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अदब में तब्दीलियां इस तरह से मैकेनिकी ढंग से नहीं होती है, 2001 का अफसाना अलग है, 1999 का अलग है। यहाँ तो तब्दीलियां बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, एक बात। दूसरा ये कि रिकॉग्निशन आपको 40-50 साल की उम्र से पहले नहीं मिलता, आप बेशक लिखना 20 साल की उम्र से शुरू कर दें, तो किसको कहाँ रखेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, ये एक बड़ा टेढ़ा सा और टेक्निकल सवाल है। तो इससे बेहतर ये है कि हम अफसाने को अगर शख्सियात से हटाकर तकनीक तक और मौजूआत तक ही महदूद रखें, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर नतीजे सामने आ सकते हैं। अब जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पोस्ट मॉडर्न अफसाना, तो कुछ लोगों ने कोशिश भी की है पोस्ट मॉडर्न अफसाना, हमारे दोस्त हैं कश्मीर में अल्ताफ अंजुम, वो लिख भी रहे हैं, अलीगढ़ में हैं शाफिक किदवाई, वो लिख रहे हैं इस मौजू पे। लेकिन मुझे खुद ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है, माफ कीजिएगा, कि ये थ्योरी जो है तख्लीक से कनेक्ट नहीं हुई। थ्योरी अपनी जगह, और थ्योरी पढ़ाई जा रही है, और थ्योरी

0: होना चाहिए। लिटरेरी थ्योरी जो है सारे दुनिया में पढ़ी जा रही है और पढ़ना हमें चाहिए, लेकिन थ्योरी का और जो तख्लीक का पुराना रिश्ता था, जैसे तरक्की पसंदों ने एक खास तरह की आइडियोलॉजी दी,
1: हाँ, नजरिया था
0: और उसको उन्होंने तख्लीक में भी इम्प्लीमेंट किया और तनकीद में भी इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह जदीदियत वालों ने शबखून वगैरह बाकायदे एक तहरीक चलाई, और तनकीद और तख्लीक उनकी एक तरह की एक पहचान बनाती है, हम उससे मुत्तफिक हों या ना हो। लेकिन यहाँ पोस्ट मॉडर्निज्म वाला मामला जो है ये अभी तक जमा नहीं। कुछ लोगों ने फैज साहब की नज्मों का एनालिसिस भी किया है, जैसे कि फैज साहब को कैसे ना पढ़ें। तो मेरा कहना सिर्फ यह है कि जैसे सदी बदल रही है तो कुछ चीजें यकीनन ऐसी हो रही हैं जो पहले अफसाने निगार के जहन में नहीं थी या लार्ज स्केल पे नहीं हो रही थी। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि दलित राइटिंग्स की रिवायत हिंदी में बहुत पुरानी है और प्रेमचंद से शुरू होती है, हालांकि कुछ लोग इत्तफाक नहीं करते, उन्हें मुंशी भी कहा गया, प्रेमचंद को किसी ने कह दिया, जो जाहिर है कि अच्छी बात नहीं। मतलब एक स्कूल है जिसकी समझ यह है कि दलित राइटर ही दलित थीम्स पर, दलित मौजूदात पर लिख सकता है, लेकिन बहुत से लोग इत्तफाक नहीं करते। प्रेमचंद तो अच्छे खासे मिडिल क्लास आदमी थे।
1: मैं भी इससे इत्तेफाक नहीं करती कि एक दलित ही दलित के लिए लिख सकता है।
0: हाँ, लेकिन एक नजरिया चल रहा है।
1: हाँ, ये है नजरिया है।
0: बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं। मतलब वो उनकी एक थ्योरी है, उसके पीछे एक नजरिया।
2: नहीं, मौजू का डॉक्टर साहब कोई पाबंद नहीं होता है कि दलित उस पर लिखा। अब देखिए, ये नहीं कि खवातीन के मसाइल पे खवातीन ही लिखेंगे।
1: हम तो बहुत महदूद होकर रह जाएंगे।
2: हमारे यहाँ के पहले नावल निगार नजीर अहमद ने खवातीन के मसलों पर नावल लिखे।
0: राजेंद्र सिंह बेदी ने जिस अंदाज से खवातीन के मौजूद को छुआ है, वहाँ तक तो मेरे ख्याल में बहुत सी खवातीन भी नहीं पहुँच पा
1: रही। अपने दुख मुझे दे दो, देखिए आप पूरा उसका खातून का जो दर्द है वो एक मर्द महसूस कर रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो हम इस तरह खानों में तो नहीं बटेंगे।
2: अच्छा, ये बात जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने कही है ये बिल्कुल सही है कि कोई भी तख्लीककार किसी नजरिए को देख कर अफसाना नहीं लिखता। जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म की बात हो रही है, अब बहुत से लोग आज 21वीं सदी में या 20वीं सदी के बिल्कुल अवाखिर में प्रेमचंद के यहाँ माबादे जदीदियत
1: तलाश।
2: अब प्रेमचंद ने कहा माबादे, अब एक साहब कहने लगे भाई मैं आपके अफसानों में माबादे जदीदियत के नजरिए से आपको मुताला करना चाहे तो मैंने कीजिए, मैंने तो कभी लिखा नहीं
0: वो फिर भी निकाल लेंगे कुछ
2: वो निकाल लेंगे। तो तख्लीक कार कोई भी हो, 21वीं सदी का हो या 20वीं सदी का, वो अपने अहद के मौजूआत को देखते हुए, मसाइल को देखते हुए लिखता है और वही कामयाब होता है, वही तख्लीक जो है हमेशा जिंदा भी रहती है। आज देखिए आप 21वीं सदी में दुनिया बहुत सिमट गई है। पहले जैसे आप देखें कि कदीम दास्तानों में रोम और चीन और वो जब कहते थे तो उसका मतलब था कि बहुत दूर है वो जगह। आज कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर आदमी सब देख लिया, टीवी के लिए उसे अमरीका का भी मालूम है, लाइव टेलीकास्ट होते हैं सब। तो आज का जो तख्लीककार है उसके पास मौजूआत बहुत है, वो आलमी सतह पर लिख सकता है। क्यों? इस वजह से कि उसका मुताला और मुशाहिदा बहुत वसी हो गया है। पहले मुताला महदूद होता था, आज इंटरनेट के जरिए उसे सारी किताबें भी दस्तयाब हैं। आज टीवी के जरिए वो सब कुछ देख सकता है जो पहले लोग नहीं देख पाते थे।
1: आपने जैसे कहा कि मुताला जो है, मुझे लग रहा है मुताला कम हो गया है, मुशाहिदा ज्यादा हो गया है। मतलब
2: नहीं, मुताला देखिए, मुताला चाहे वो किताब के जरिए करे चाहे वो कंप्यूटर के जरिए करें, मीडियम बदल गया है।
1: बिल्कुल, लेकिन ये बहुत कम हो रहा है।
2: आज जो है मेरे बच्चे भी और दूसरे नौजवान भी बजाय हाथ में हर वक्त मोबाइल रहता है, तो कभी कभी हम बच्चों से पूछते हैं तुम हर वक्त मोबाइल में क्या करते रहते हो, कि हम तो अपने कोर्स का पढ़ रहे हैं। मुझे खुद अगर किसी किताब की जरूरत पड़ती है और मेरी अपनी घर की लाइब्रेरी में नहीं है तो मैं रेख्ता जिस पर किताबें मिलती है मैं खुद रेख्ता पर सारी किताबें पढ़ लेता हूँ। तो ये तो मुताले का मतलब यही नहीं है कि हम ये आप किताब हाथ में लेकर ही पढ़ें, उससे पढ़ रहे हैं। मुशाहिदा ये कि हम सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज आप देखें कि अगर हादसा होता है कहीं तो हादसा बाद में होता रहता है, लोग उसकी मोबाइल पे वीडियो बनाते रहते हैं।
1: बिल्कुल,
2: और वो वीडियो सब जगह वायरल होती है।
1: तो
2: सब अब मैंने देखिए कल ही टीवी पर रात एक खबरों में देखा, गुजरात में एक मोटरसाइकिल पे एक मियां बीवी जा रहे थे, बीच में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था और बहुत तेज रफ्तार जीप जो है उन्हें कुचलती हुई चली गई। खुदा जाने वीडियो भी उसकी उस पर आ रही है,
0: किसी ने वीडियो बनाई।
2: तो ये चीज वीडियो बन रही, कोई हर चीज की वीडियो मौजूद है। तो ये तख्लीक कार के सामने वो दर्द, अब देखिए कितना सेंसिटिव मामला है कि वहां वो जैसे मोटरसाइकिल गुजरी, ये तख्लीक कार के लिए है कि वो एक पूरी पूरी जुजियात लिख सकता है, जुजियात को

0: देख सकता है कि मोटरसाइकिल पे से वो गिरे फैमिली, तो फौरी तौर पे उन दोनों मियां बीवी के बजाय सबसे पहले बच्चा उठ के खड़ा हो गया। तो ये चीज, ये आज के तख्लीक कार के पास बहुत कुछ है कहने के लिए।
1: वही जो
0: अगर
1: मैंने
0: हाँ
1: कहा था कि अलहदा जो शनाख्त बना रहा है वो यही कि क्योंकि मुशाहिदा ज्यादा है, ये चीजें वो देख सकता है,
0: देखिए,
1: कुछ कुछ
0: अफसाने में
1: सामने
0: एक चीज
1: है।
0: होती है कि अफसाना निगार जब कुछ बयान करता है तो उसे देखना ये होता है, खालिद साहब बहुत अच्छे नक्काद हैं उसके अफसाने के, कि अफसाने में जब हम अफसाना लिख रहे हैं तो ये सोचा जाता है कि हमें क्या नहीं लिखना, क्योंकि तफसीली बयान उसमें नहीं होता। अफसाने में ये नहीं कि हमें लिखना, कि हमें क्या नहीं लिखना, यानी
2: अल्फाज में
0: हम
2: इख्तिसार,
0: सिर्फ
2: जिसे इजाज़
0: इख्तिसार
2: इस्तेमाल
0: जिसे
2: जिसे कहा
0: कहते हैं,
2: जाए।
0: कि हमें वही कुछ बयान करना है जो हमारा मरकजी ख्याल जो है, यानी थीम, हमारे थीम का तकाजा है। अगर हमारे थीम का तकाजा चंद अल्फाज में पूरा होता है तो हमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं, जो दास्तानों में होता था,
1: देखिए ये फिर
0: दास्तान में
1: वही
0: होता था।
1: 21वीं सदी की
0: और
1: बात आ
0: आज आप
1: गई
0: देखें,
1: है
0: नहीं मैं बता रहा हूं आपको, देखिए
1: जी,
0: 21वीं सदी
1: अदीम
0: का,
1: उल-फुरसती की वजह
0: 21
1: से ये
0: 21
1: है।
0: नहीं नहीं नहीं अदीमुल फुरसती नहीं, ये
1: बिल्कुल
0: उर्दू अफसाने के फन का तकाजा है। क्या अगर हम देखे, मैं आपको बताऊं,
1: देखिए अभी
0: मैं
1: ना
0: आपको एक फर्क बताऊं,
1: कारी के
0: तीन
1: पास वक्त भी नहीं है कि वो इतना
0: मैं
1: 20 पेज
0: अफसानवी,
1: के
0: देखिए
1: अफसाना पढ़ेगा।
0: अफसानवी अदब में हम तीन असनाफ लेते हैं, दास्तान,
2: नावल
0: नावल और अफसाना। अब इन तीनों में मैं आपको एक फर्क बताऊं, दास्तान में इतनी तवालत होती है कि अगर उसमें से आप दो चार किस्से निकाल देंगे तब भी कहानी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बागो बहार चार दरवेश का किस्सा है, एक किस्सा अगर निकाल देंगे तीन दरवेश पे भी कहानी पूरी
2: जी
0: हो जाएगी। नॉवेल में जो वसत है, नॉवेल के वसत में से अगर आप दो चार सफे निकाल देंगे तो उसकी कहानी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अफसाने में से आप दो चार जुमले निकाल देंगे तो उसके बुनियादी थीम पर असर
2: वो तो
0: पड़ेगा।
2: बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता
0: तो
2: है ना।
1: मेरे
2: मैं
1: ख्याल
2: जो
1: से कृष्णचंद्र के अफसानों में
0: मेरे
1: से आप पूरे पूरे पैराग्राफ निकाल दीजिए, 24 फर्क नहीं पड़ेगा,
0: नहीं वो अलग
1: ये
0: बात
1: मत
0: है, लेकिन अफसाने
1: कीजिए।
0: में यही है, जो अच्छे अफसाने हैं कि
1: जी
0: उसमें से अगर आप चाहे कफन हो उसमें से कुछ जुमले निकाल देंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आज के लिखने वाले के सामने इतना वसी मुशाहिदा है कि उसे वही लिखना है जो उसकी कहानी चाहती है।
1: अच्छा खालिद अशरफ साहब, आप क्योंकि आपकी तो किताबें भी बहुत सी आ चुकी हैं और अफसाने के बहुत अच्छे नाकिद हैं आप, तो ये बताइए कि जैसे हमें 20वीं सदी के अव्वलीन दहाई में, अव्वलीन 2 दहाइयों में
0: जी
1: हमें सज्जाद हैदर यलदरम और मुंशी प्रेमचंद जैसे अफसाना निगार मिले थे, और उन्हीं की राहों पे, रोशन की हुई राहों पे आज का अफसाना निगार चलता है, तो ये बताइए क्या हमें 21वीं सदी के अव्वलीन 2 दहाइयों में ऐसा कोई अफसाना निगार नजर आ रहा है? आपको कुछ ऐसे नक्कूश मिल रहे हैं कि ये लोग, इनके अफसाने बाद बाद
2: जी
1: तक जिंदा
2: बिल्कुल
1: रहेंगे?
2: है। और देखिए, मैं अफसाने की सूरत हाल से मायूस नहीं हूं, और बहुत जगह कहा जा रहा है कि आप प्रेमचंद पैदा नहीं होंगे और कुरतुब हैदर पैदा नहीं होंगे, तो वो तो कहीं भी टॉलस्टॉय और बर्नार्ड
1: हाँ
2: शॉ और शेक्सपियर
1: जी
2: पैदा तो होने बंद हो गया, लेकिन अफसाना लिखा जा रहा है, और अफसाना हमारे यहां भी लिखा जा रहा है और सरहद के पार भी लिखा जा रहा है। चूंकि उधर की किताबें इधर नहीं आती, उधर की किताब इधर नहीं आती, इसलिए अक्सर हम उधर की बातें ज्यादा नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि अफसाने में लगातार नई चीजें आ रही हैं। वो नई चीजें क्या हैं? एक तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि एक दलित मूवमेंट जिस तरह से 15-20 साल में मजबूत हुआ है, हमारे यहाँ दलित मूवमेंट बाकायदा दलित राइटिंग्स नहीं थी, बल्कि ये कहना चाहिए कि प्रेमचंद ने लिखा कुछ, कृष्णचंद ने कुछ अफसाने लिखे। आपने भी कृष्णचंद का जिक्र किया ना, कि कृष्णचंद के अफसानों में शायरी भी है, लेकिन शायरी के अलावा उनका एक समाजियाती थीम भी होता है। उसके बाद से तकरीबन लिखना बंद हो गया था। अब इधर पिछले 10-15 साल में खासतौर पर हमारे यहाँ दलित राइटिंग्स हो रही हैं, और 2-3 किताबें छपी हैं दलित अफसानों पर, दलित शायरी पर, और एक साहब जो हैं गया में, अहमद सगीर, वो दलित
0: लिखना
2: इश्यूज पर लगातार पूरी किताब उनकी आई है दलित अफसानों पर लिख रहे हैं। एक तो ये नई तब्दीली हमारे यहाँ आई है कि हमारे समाज में एक जो कमजोर तबका है जिसकी तादाद काफी है, खासी है, उसको मेन स्ट्रीम में लाके डिस्कस किया जा रहा है। दूसरा ये हुआ है कि खवातीन के जो एम्पावरमेंट का मूवमेंट बना है, खवातीन की ताकतवरी का, वो भी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, पिछले 20-30 साल में ही वो स्ट्रांग हुआ है। मूवमेंट तो जाहिर
1: फेमिनिज्म
2: है
1: के बाद
2: पुराना
1: ही
2: है।
1: आया है वो।
2: हाँ,
1: जी
2: तो फेमिनिज्म जिसे कहते हैं
1: जी जी
2: अंग्रेजी में, उसके तहत लगातार हमारे यहाँ खवातीन का एक रशीद जहां की और इसमें चुगताई की और कुरतुब हैदर की ट्रेडिशन जो थी उसको जारी रखे हुए हैं। और खासतौर पे मैं एक नाम जो बहुत पावरफुल नाम है और जो खासी सीनियर भी है, जकिया मशदी,
1: अभी उनको अवार्ड
2: हाँ
1: मिलने वाला
2: उनका
1: है
2: नाम
1: जी।
2: लेना चाहूंगा, अवार्ड मिलना चाहिए। तरन्नुम
0: जी
2: रियाज हैं, निगार अजीम है,
0: निगार अजीम
2: साथ
0: है
2: खान
0: सर।

0: अफसाना
1: लिख रहे
0: है
1: हैं,
0: ये सब
1: ये
0: लोग
1: बराबर
0: लिख रहे हैं।
1: लगातार लिख रही हैं। अभी मैंने कल ही उनका एक अफसाना पढ़ा है, जकिया मशदी का, रोशन बीबी का बघार। साहब वो जैसे आप अर्ज किया था ना कि जनरेशन किस तरह से बदलती है, आज की जनरेशन जो आज बहुत मॉडर्न दिखाई देती है, कमर वाली जनरेशन, कमर उसमें किरदार है, वो जब उसकी बेटियां जवान होने लगती हैं और वो बेटी जो है बॉम्बे जॉब करने जाती है, लखनऊ इंटरव्यू देने जाती है, कुछ लड़कियां मिलकर कमरे में रहती हैं, वहीं जॉब करती हैं और उन पे तरह तरह के इल्जाम भी लगाए जाते हैं और वो हर वक्त ऑनलाइन रहती हैं, जैसे आपने अर्ज किया ना कि इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ा है, और फिर फिरका परस्ती साथ साथ चल रही है, और फिर उन्हीं लड़कियों की जब शादी होती है तो शौहर जो है उनको मारता भी है, शराब पी के आता है, उन पढ़ी लिखी लड़कियों के शौहर, और उनसे उम्मीद करता है कि वो लड़के ही पैदा करेंगे, और सास भी शामिल है, सास भी चाहती है कि लड़के पैदा करें। सास की थ्योरी यह है कि अगर औरत के ख्यालात अच्छे होंगे तो लड़का पैदा होगा, बेटा अगर औरत नेक होगी और शरीफ होगी और अच्छे विचार होंगे, उसके संस्कार अच्छे होंगे वगैरह वगैरह। तो साहब ये राइटिंग्स हो रही है हमारे यहाँ जो पहले नहीं हो रही थी। फिर एक हमारे यहाँ थीम जो 90s के बाद से फिरका परस्ती का,
0: जी
1: उसमें
0: हाँ
1: लगा के सलाम बिन रजाक, शफक, शौकत हयात और अनवर कमर, एक छोटा सा अफसाना पढ़ा अनवर कमर का मैंने, जहाज पर क्या हुआ, जो
0: जी
1: बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ, तो हैरत अंगेज है। अच्छा, शुरू तो किया था सिलसिला ये आप समझिए कि हैतुल्ला अंसारी ने लहू के फूल में, और उससे पहले तरक्की पसंदों ने ये सब किया था, लेकिन इसको फिर कुतुब अहमद ने नावल लिखा पूरा, चांदनी बेगम, उसमें फिरका परस्ती का इशू आता है। तो थीम बदल रहा है हमारे यहाँ। फिर उसके साथ साथ मैं एक चीज करना चाहता हूं कि जबान भी बदल रही है। आज की जबान जो है तरक्की पसंदों की जबान नहीं है,
0: सारी बात है,
1: जिसमें
0: मौजू के लिहाज से और मसाइल के हिसाब से ये सब चीजें तो बदलेंगी
1: बदलेंगी
0: जी।
1: तो तब्दीली उस तरह से तेज रफ्तार नहीं है, हो नहीं सकती अदब में, लेकिन तब्दीली बहरहाल हो रही है, नए नए नाम आ रहे हैं और नई नई चीजें निकल के आ रही हैं, और अफसाने का जो एक पुराना तसव्वुर था ना, बहुत सिका, बहुत साफ सुथरा, बहुत प्यूरिटन, वो बिखर रहा है, बिखर चुका है, टूट चुका है
0: बिखर
1: वो।
0: चुका है वो तो अब
1: देखिए,
0: मुझे
1: जो
0: ये
1: बात
0: अफसोस
1: इन्होंने,
0: है
1: डॉक्टर साहब ने कही अभी,
0: जी।
1: कि अब 21वीं सदी में मौजूआत के साथ साथ जबान भी बदल रही है, और ये वाकया है। वो इसकी वजह यह है कि कारी जिस चीज की डिमांड करता है। आज आप देखें कि 1960 में मुगले आजम फिल्म आई तो वो बहुत मकबूल हुई, जी
0: जबकि
1: जी
0: वो सारी फिल्म जो थी उर्दू के डायलॉग थे उसमें, क्योंकि उर्दू का
1: फारसी
0: माहौल
1: का था,
0: था।
1: उर्दू कहना चाहिए,
0: फिर आप देखिए उसके बाद, मैं ख्याल शायद 72 72 आठवीं दहाई
1: पाकी
0: में
1: था,
0: रजिया सुल्तान,
1: उससे पहले
0: नहीं
1: पाकी था।
0: रजिया सुल्तान आई, वो फ्लॉप हो गई। उसके डायलॉग ने उर्दू जो आसान उर्दू की तरफ लोगों ने, तो मैं जो आप जो खालिद साहब ने बात कही कि अगर आज का जो 21वीं सदी का लिखने वाला है वो आम फहम जबान में लिखने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके कारी तक उसकी बात पहुंचे। अगर आज कुरतुल ऐन हैदर, काजी अब्दुल सत्तार, इनकी मुकफ़ा मुसज्जा या वो कुर्सी को अगर वो जबान पहुंचेगी तो वो इतनी मकबूल नहीं होगी। उसकी वजह है कि
1: मेरे
0: भाई
1: ख्याल में
0: देखे,
1: नए
0: देखिए
1: लोग
0: जैसा
1: आसानी से लिख भी
0: कारी
1: नहीं पाएंगे वो जबान।
0: नहीं
1: जी
0: नहीं लोग
1: नहीं,
0: लिख भी
1: वैसे
0: नहीं
1: जैसा
0: पाएंगे,
1: कारी
0: क्योंकि
1: होता है
0: उनका
1: वैसा ही तो जबान भी
0: उसी
1: होगी,
0: जबान उसकी,
1: और
0: और
1: कुछ मसाइल का भी होता है कि
0: मसाइल
1: जैसे
0: का
1: मसाइल आपके पास है, अब
0: मसले
1: जाहिर ही
0: हैं,
1: बात
0: जाहिर
1: है
0: है मसले तो
1: जी।
0: देखिए ऐसा है कि मसले जैसे अभी
1: डॉक्टर साहब
0: बात
1: एक
0: कर रहे
1: चीज
0: थे
1: मैं अर्ज
0: डॉक्टर
1: करना
0: साहब,
1: चाह
0: मसले
1: रहा
0: तो
1: था,
0: वही हैं देखिए, चाहे फिसादात का हो, फिरके वारियत का हो, घरेलू सामाजिक मसाइल हो, मसाइले मसले तो जो
1: दलित
0: है
1: मसाइल हैं,
0: दलित मसाइल हैं, मसले तो सब हर सदी में बदलते जाते हैं, लेकिन होते
1: बस
0: सब
1: उन्हीं के
0: एक
1: हिसाब से ये
0: से
1: सब
0: उसके
1: चीजें
0: हिसाब से, एक
1: मौजूदात
0: ही
1: के
0: साथ
1: हिसाब, आप सही फरमा
0: मौजूआत
1: रहे
0: के
1: हैं कि
0: एतबार
1: डॉक्टर
0: से
1: साहब एक बात मैं
0: लिखा
1: अर्ज
0: है।
1: करना चाहता था, जबान के हवाले से, जैसे आपने फरमाया कि कुरतुल्लन हैदर वाली जबान नहीं लिखते, मेरा जरा सा ये कहना था कि मुझे कहीं ऐसा लगता है कि पुराने जो हमारे अदीब और शायर थे, जैसे शायरों के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर आपको शायरी शुरू करनी है उर्दू शायरी, तो फुसहा के अहले जबान के 10,000 अशार
0: तो
1: असातिज़ा
0: याद
1: के
0: कीजिए,
1: आपको याद होने चाहिए।
0: बिल्कुल वो
1: जी
0: पहले होता था,
1: पहले
0: दाग यही करते थे जब उनके पास कोई
1: होता
0: शागिर्दी के लिए आता था, लेकिन अब
1: कहते थे
0: तो किसी
1: कितने
0: को
1: अशार
0: दस
1: याद
0: अब
1: हैं।
0: तो 10 शेर भी याद नहीं होंगे, तब
1: लेकिन
0: शायरी शुरू
1: मेरा
0: कर देते।
1: कंसर्न ये है, मेरा कहना यह है कि क्या हमारे अदीब, हमारे अफसाने निगार, हमारे नाविल निगार, क्या जो दूसरा अदब लिखा जा रहा है, आलमी अदब लिखा जा रहा है, हिंदुस्तान में इलाकाई अदब लिखा जा रहा है, क्या उसका मुताला करते हैं या नहीं, या कुरतुल हैदर जैसी जबान लिखने की अहलियत भी रखते हैं कि नहीं, मुझे माफ कीजिएगा।

0: अभी मैंने
1: है।
0: पहले शुरू में यही बताया था कि ये जो आप कह रहे हैं कि वो कुरतुलैन हैदर वाली जबान रखते हैं या नहीं, या ये जबान पढ़ सकते हैं या नहीं, तो जैसा कारी होगा, अफसाना निगार जिसको दस्तरस होती है अपनी जबान पर, वो अपने कारी की जरूरियात पूरी करता
1: जैसे
0: है, जैसा
1: जैसे
0: कारी है वैसा ही वो लिखेगा। इसीलिए तो आप देख लीजिए, अब कसीदा खत्म हो
1: देखिए
0: चुका
1: वही
0: है,
1: है ना, मार्केट में जिस चीज की जरूरत
0: जाहिर
1: होगी
0: बात
1: वही
0: है वो डिमांड
1: चलेगी, डिमांड
0: एंड सप्लाई।
1: एंड वही है मामला। तो आज ऐसा है, जैसे खालिद साहब ने ये बात कही कि ये लोग मायूसी नहीं है उर्दू अफसाने से या
0: नहीं,
1: उर्दू
0: मायूसी तो
1: जबान से,
0: बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
1: अफसाना उर्दू का
0: अफसाने
1: लिखा जा
0: को
1: रहा है, खाना
0: लगातार लिखा है। जी
1: खूब लिखा
0: जी
1: जा रहा है। और आप देखें खालिद साहब के 8वीं दहाई में 20वीं सदी के, ये लग रहा था कि नावल खत्म हो गया,
2: जी
1: ये
0: जी
1: नावल लिखा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल। लेकिन जब 8वीं दहाई के अवाखिर में
0: हाँ
1: नावल लिखने शुरू, मेरे ख्याल से पिछले 25-30 साल में 200-300 नावल आ गए होंगे,
0: अरे अस्सी
1: और
0: के बाद
1: ज्यादा आ गए
0: रिवाइव
1: होंगे।
0: हुआ है
2: उस
0: जी,
2: नावल तो 1-1 हज़ार पेज के
1: एक एक
2: हैं,
1: हजार
2: एक एक
1: पेज
2: हजार
1: का,
2: पेज के
1: तो
2: नावल हैं।
1: नावल बहुत ज्यादा लिखे जा रहे हैं। और वही अफसाना निगार ने जो सिर्फ अफसाने तक महदूद थे ये था, वो अब नावल भी लिख रहे हैं। मैंने जो एक बात कही कि अब आज के लिखने वाले का मुशाहिदा बहुत वसी है, पहले था कि कुछ और चाहिए वसत मेरे बयां के लिए वाली बात, तो अब गजल के बजाय वो जैसे गजल वाला नज्म का है और नज्म अफसाने वाला, अब उसके पास इतना
0: नॉवेल का
1: मुशाहिदा है कि वो
2: तहस
1: नावल तक फैला
0: है।
1: सकता है अगर उसके पास वक्त है तो।
0: अच्छा, अभी एक तहरीक की बात हुई थी, देखिए तरक्की पसंद तहरीक हुई तो उसके तहत अफसाने लिखे गए, फिर जदीदियत की तहरीक आई, फिर हल्का अरबाब ज़ौक आए, तो ये सब अपने मकासिद को लेके। तो आप क्या समझते हैं, इस दौर में हमारे उर्दू अफसाने को किसी तहरीक या तंजीम की जरूरत है?
1: नहीं, इसमें मेरी राय जो है, मेरे ख्याल में कि आज के तख्लीकार के सामने ना कोई तहरीक है ना कोई रुझान है, मेरी अपनी ज़ाती
2: जी
1: राय
2: जी
1: है ना। वो तरक्की पसंद तहरीक जैसा है, शालिक साहब खालिद साहब और बेहतर बता सकते हैं, तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेरे असर कुछ लिख रहा है ना, जदीदियत के रुझान के ज़ेरे असर कुछ लिख रहा है। वो अपने जज्बात के इजहार के लिए अपनी तख्लीक को पेश कर रहा है, वो जो कुछ देख रहा है कि मुझे अपने एहसास को जब्त नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, तो वो जो कुछ सोच रहा है कि मैं अपनी बात को कारी तक पहुंचाऊं, उसमें ना इबहाम हो ना तजरीद हो ये ना प्रोपेगेंडा हो, ये क्या खालिद साहब
0: खालिद
1: आपकी
0: साहब,
1: क्या राय
0: आपका
1: है?
0: इस बारे में क्या राय है?
2: देखिए मुझे, मैं आपसे डॉक्टर साहब इत्तेफाक करता हूँ पूरी तरह। तहरीके कुछ लोगों के चलाने से तो पैदा होती नहीं है, बनती नहीं, वो एक मखसूस सियासी समाजी हालात थे, और उसमें जो एक सोशलिज्म का एक बड़ा मूवमेंट था ना सोवियत यूनियन का,
1: हाँ,
2: उसका
1: उस वक्त की
2: असर,
1: तकाजा
2: उसके
1: था।
2: उसका कहना चाहिए कि उसकी प्रोडक्ट थी वो तरक्की पसंद तहरीक, और उसमें इंपीरियलिज्म के खिलाफ जो मूवमेंट चला था आजादी का, पूरे थर्ड वर्ल्ड में चल रहा था, वो सारी चीजें थी। तो अब मुझे भी यकीन ऐसा लगता है कि तहरीकों का जमाना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मानता हूं कि अदब जो है सियासत से अलग नहीं हो सकता।
1: सवाल ही
2: अब
1: पैदा
2: जैसे
1: करते हैं,
2: आपने एक अफसाना लिखा ना,
1: सियासत भी समाज का हिस्सा
2: जी
1: है
2: बिल्कुल, और वो हमारे अंदर है,
1: ना,
2: हमारे अंदर
0: अंदर
2: घुस गई है
0: ना।
2: वो। अब जैसे आपने एक अफसाना लिखा सिर्फ एक शब्द का फासला,
1: जी,
2: आपका अफसाना है, बड़ा अच्छा अफसाना है, और आप उसे दास्तानों के अंदाज में लिखते हैं, अरबी किरदार डालते हैं उसमें, जैद बिन हारिस, लेकिन कहानी तो हमारे यहां की है वो। तो अफसाने की एक तो सियासी तहरीकात हुई, दूसरी जो ब्रॉडर ह्यूमन वैल्यूज हैं, मसलन ये कि मुसावात होनी चाहिए, औरतों को हकूक मिलने चाहिए, दलितों को हकूक मिलने चाहिए, माइनॉरिटीज को हकूक मिलने चाहिए, एनवायरमेंट का इशू है, और जो कहना चाहिए कि सस्टेनेबल ग्रोथ का जो चल रहा है ना आजकल के, भाई इतना पोल्यूशन है, हम कैसे जियेंगे, हमारी नस्लों क्या होगा, जमीन का नोहे का अफसाना है हसन मंजर का कराची से, वो सब इन चीजों को अहाता करता है। और तहरीकों का टाइम तो शायद नहीं रहा, लेकिन अब हम नहीं कह सकते कि मुस्तकबिल में आगे चल के कोई बड़ी तहरीक पैदा हो जाए, तहरीकें पैदा होती हैं जब तहरीकों का टाइम आता, हम कोई कहना चाहिए कि मुस्तकबिल के बारे में नहीं कह सकते,
0: नहीं, अभी दलित
2: लेकिन
0: तहरीक
1: लेकिन
0: जैसे
1: बहुत
0: चल
1: सी
0: रही है
1: चीजें
0: तो
1: देखिए,
0: बहुत
1: अभी
0: से
1: जैसे
0: अफसाने
2: डॉक्टर
0: बने
2: साहब ने,
0: हैं।
2: बराबर
0: जी
2: अफसाने में हैं हमारे
1: डॉक्टर साहब
2: लिए।
1: ने मेरे अफसाने का जिक्र किया, मैं कहूँ आज का जो लिखने वाला है वो ये जानता है कि हमें अपनी बात को कहने का सलीका क्या चाहिए। हम बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट नहीं कह सकते, तो एक हम अलामती अंदाज में या उसमें, जैसे मैंने अफसाना लिखा नया दरिंदा
2: जी
1: खौफ, तो उसमें है तो वो दास्तानवी अंदाज में, लेकिन है वो आज की
2: आज के
1: कहानी।
2: हालात पर है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर इब्ने कवल साहब और एसोसिएट प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब
2: शुक्रिया
0: इस
2: मैडम
0: महफिल
2: आपका
0: में आने
2: भी।
0: का। तो आज की महफिल के मुजाकरे का जो मौजू था 21वीं सदी में उर्दू अफसाना, तो तय ये हुआ कि उर्दू अफसाने से आप लोग मायूस नहीं हैं, उर्दू अफसाना तरक्की कर

0: उनके सोल्जर्स मिलेंगे आपको, कुछ आपकी उम्र के होंगे, बिकॉज यू गेट कमीशन्ड एट 21, 22, 23 इयर्स ऑफ एज. सो कुछ आपकी उम्र के होंगे, कुछ उम्र में आपसे ज्यादा होंगे, कुछ काफी ज्यादा होंगे. रैंक में आप शायद उनसे ऊपर हो, बट कॉम्पिटेंस में, स्किल लेवल में, एक्सपीरियंस में अभी आप वहां पहुंचे नहीं. सो जब आप वहां पहुंचते हैं, यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा स्टेप्स. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू मेक योर सेल्फ इक्वल टू, इफ नॉट बेटर देन देम, एंड देन ओनली यू विल कमांड देयर रिस्पेक्ट, अर्न देयर रिस्पेक्ट एंड बिकम एन ऑफिसर इन द ट्रू सेंस. दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज दैट सडनली फ्रॉम अ वेरी स्केड्यूल्ड इन्वायरमेंट, जहां पे आपको कब उठोगे, कब खाओगे, कब पियोगे, कब ट्रेनिंग करोगे, कब सोगे, वो सब जो है वो राइटिंग में आपको मिलता था. एंड नाउ यू कम इनटू अ सिचुएशन वेयर देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 30, 35, 40, 50 पीपल. यू हैव टू मेक डिसीजंस, यू हैव टू यू नो डू मल्टीपल थिंग्स, यू हैव टू टेक रिस्क, बिकॉज दीज आर लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन. So, you know, suddenly maturity is thrust on your shoulders, and this is a very interesting, very painful, and very necessary stage. आप तभी जब जब आपके soldiers आपके साथ आराम से बात कर सकते हैं, they can approach you, आपके साथ train कर सकते हैं, आपके साथ खा सकते हैं, पी सकते हैं. That is the day you truly become an officer.
1: और मुझे लगता है कि शायद ये वो एक क्षण होता होगा जहां पर आप स्वयं से लड़ते हैं. मैदान जंग में लड़ना तो अभी बाकी है, लेकिन यहां सबसे पहले लड़ाई खुद के साथ है.
0: बिल्कुल, बिकॉज यू हैव टू लीड, यू हैव टू गेट अप एंड गेट गोइंग. है ना, वो आराम का कि कोई बता देगा कब उठना है, कब करना है, वो जमाना चला गया, वो टाइम चला गया. एंड देयरफॉर यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योर सेल्फ टू प्रूव दैट यू आर as good as the troops that you lead, jinke jinki command aapko di gayi hai. So ye pehli ladai aapke sath hai, because that hard work takes effort.
1: अभी आपने जितनी बातें मुझे बताई हैं, कहीं ना कहीं एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आया है. और अक्सर जब हम इन तीन शब्दों को देखते हैं तो ये मात्र शब्द नहीं रह जाते, इनका मायना, इनकी परिभाषा बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है. अगर मैं किसी भी ऑफिसर से पूछूंगी तो बस वो यही कहेंगे, नाम नमक निशान. नाम नमक निशान क्या है?
0: सो दिस इज द इथॉस ऑफ द इंडियन आर्मी. मैं इसको थोड़े कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ. जब मैं कमीशन हुआ तो जो मेरे ट्रूप, मेरी यूनिट के ट्रूप्स थे, वो हिल्स और हिल ट्राइब्स में से थे. तो वो कश्मीर घाटी से, जम्मू से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, असम से, और जो नॉर्थ ईस्ट की सेवन सिस्टर्स हैं उन सबके से आए हुए थे. नागास थे, मीजोस थे, मणिपुरीज थे, मेघालय से थे, त्रिपुरा से थे. एंड अगर देखा जाए तो जो कश्मीर से है और जो नागालैंड से है, उसके बीच में देर इज नो अफिनिटी, देर इज नथिंग कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है. लेकिन एक यूनिट में, एक टुकड़ी में होने के बनस्पत, बिकॉज यू ट्रेन टुगेदर, यू ईट टुगेदर, यू लिव टुगेदर, एंड समटाइम्स यू डाई टुगेदर, आपस में वो एक दूसरे का भाईचारा, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जीवन व्यतीत करने के लिए, यू ब्रेक, जैसे बोलते हैं ना, आपने नमक जो है एक दूसरे का खाया है. सो दैट इज द फर्स्ट एसेंस, दैट कमराडरी या आपसी भाईचारा ये फौज आपको सिखाती है. देन ये टुकड़ी जो है आपके ऊपर आंच ना आए, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए. आप लड़ाई में, ऑपरेशंस में जा रहे हैं या ट्रेनिंग में कर रहे हैं, आपकी कोई गलती ना निकाले. दैट इज व्हाई यू ऑपरेट एज अ ग्रुप, टुकड़ी, वो जो है आपके निशान के लिए, आपके नाम के लिए. ठीक है, वो जो है कि आपकी यूनिट का नाम खराब ना हो. एंड इफ यू लुक एट इट एट अ लार्जर लेवल, ठीक है, यूनिट्स, ग्रुप्स ऑफ यू नो जो भी फॉर्मेशंस हैं, कि देश का निशान, फौज का निशान जो है उस पे आंच ना आए. ठीक है, सो राइट फ्रॉम द फैक्ट दैट एट द लेवल आप अपने भाई के लिए लड़ रहे हो, आप अपनी यूनिट के लिए लड़ रहे हो, और आप अपने देश के झंडे के लिए लड़ रहे हो, दैट इज द कोर इथॉस ऑफ द इंडियन आर्मी. एंड देयरफॉर

0: नाम नमक निशान।
1: जी, नाम नमक निशान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर सिपाही, हर ऑफिसर, उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि आपकी पोस्टिंग्स के बारे में। सबसे पहले आप भटिंडा में डिप्लॉय हुए, वहां पे आपकी पोस्टिंग आई, उसके उपरांत फिर कैसे सिलसिला आगे बढ़ता रहा?
0: मैं ऐसी यूनिट में था जिनकी कुछ जगहों पर टेन्योर्स थोड़े लंबे रहते हैं, तो भटिंडा में इनिशियली कमीशन हुआ और बीच में हमें काफ़ी कोर्सेज करने पड़ते हैं, तो डेढ़ दो साल जो है हमारे कोर्सेज में निकल जाते हैं। अलग अलग विभिन्न किस्म की ट्रेनिंग होती है और वो जब ख़त्म हुए तो मेरी सिलेक्शन हो गई। एक डिप्लॉयमेंट हो रही थी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनन। ये इसराइल लेबनन बॉर्डर पे यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन है। उसमें नॉर्वे हट रहा था और इंडियन कंटिजेंट वहां डिप्लॉय हो रहा था, तो उसका हिस्सा बनने का मेरी सिलेक्शन हो गई और फिर मैं वहां डिप्लॉय हो गया। उसमें इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि हालांकि मैं इंडियन आर्मी के साथ और इंडियन यूनिट के साथ गया था, आई वॉज इन अ मल्टी नेशनल यूनिट कॉल्ड द फोर्स मोबाइल रिजर्व, जिसमें 7 डिफरेंट नेशंस के ट्रूप्स थे। तो एक एक प्लटून जो है अलग अलग देश से थी, तो वी हैड आयरलैंड के थे, फिनलैंड के थे, घाना के थे, फिजी के थे, पोलैंड के थे, नेपाल के थे, विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बिकॉज यू नो ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी क्लोजली हम जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऑपरेट करते हैं और ट्रेन करते हैं।
1: जी, एक ही उद्देश्य के साथ एक साथ रहना अपने आप में ही कहते हैं कि बहुत खूबसूरत क्षण होते होंगे। लेकिन एक बात यहां पर पूछना चाहती हूं आपसे, क्योंकि वहां पर अलग अलग देशों के सिपाही, अलग अलग देशों से ऑफिसर्स, वहां की आर्मी के ऑफिसर्स वहां पर आपके साथ एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कितना सुखद होता है, कितना प्यारा होता है? क्योंकि काम के अलावा भी आपको बहुत से क्षण ऐसे मिलते होंगे या काम के दौरान मिलते होंगे जहां आपको दूसरे की जबान में या दूसरे जो हमारा दूसरे देश का जो सिपाही है, सोल्जर है, ऑफिसर है, उसके बारे में जानने को मिलता है, उस देश के बारे में जानने को मिलता है, अपने देश को का नेतृत्व करने का मौका मिलता है, वो कितना प्यारा रहा?
0: बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। यू नो दिस वाज द पहली बार था कि मैं ऐसी डिप्लॉयमेंट पे था और जब आप ऐसे जाते हैं तो थोड़ी बहुत आशंकाएं होती हैं कि कैसे दूसरे कैसे लोग होंगे, कैसे ऑपरेट करते होंगे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। बट एडवांटेज ये रहता है कि आप साथ में रहते हो, दिन रात साथ में ऑपरेट करते हो, ट्रेन करते हो, खाना पीना साथ में खाते हो। सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम अपने देश का, अपने कल्चर का, अपनी प्रोफेशनलिज्म का डिस्प्ले करें, उसी प्रकार हम उनके बारे में सीखें। ये बड़ा आप अगर कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, नहीं तो इतनी क्लोज क्वार्टर्स पे इतने लंबे टाइम के लिए साथ रहना, साथ ऑपरेट करना बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। एंड यू नो यू गेट टू नो ईच अदर बेटर, एक दूसरे को आप इंटीमेट तरीके से जान पहचानते हो। इट इज अ वेरी गुड फॉर शोकेसिंग आवर नेशन, शोकेसिंग द इंडियन आर्मी, its capabilities and what kind of people you know operate in that. So and you know on a matlab apart from training and all social events, games, sports, isme bhi interaction hota tha. So this was a very unique experience and I think this kind of a cross cultural communication is very good for exposure and for displaying our capabilities to the world.
1: बहुत खूब। कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई बात, कोई याद जो यहाँ शामिल करना चाहते हैं, हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहते हैं?
0: या सो जस्ट ऑन द साइड, बाकी तो चलो करते थे हम, लेकिन हमने अपनी लोकल इंडियन राम और छम्मा छम्मा, उस टाइम पे जो है बड़ा फेमस गाना था, वो इंट्रोड्यूस किया अपने कैंप में। एंड जब भी सोशल इवनिंग होती थी, बाकी हो ना हो, छम्मा छम्मा पे जो है खूब जो है वहां पे भंगड़ा निकलता था। इट डिड नॉट डिपेंड वेदर यू आर फिन और यू आर आयरिश और यू आर यू नो फ्रॉम फिजी, लेकिन सब जो है छम्मा छम्मा पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, खूब दबा के डांस और मजे लेते थे।
1: तो ये बात निश्चित है कि जब वो अपने घर लौटे होंगे तो उन्होंने अपने देश में भी जाकर खूब चम्मा चम्मा किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन्हें चम्मा चम्मा की धुन पर नाचने के लिए मजबूर कर दिया।
0: हाँ जी, बाद में

0: भी मिशन जब हम वहां से वापस आ गए, लेकिन ये बातें जो है काफी सालों तक चलती रही कि कैसे जो है बाकी कंटेंजेंट्स जो है इंडियन सॉन्ग्स और इंडियन डांस से बड़े प्रभावित हुए और बड़ा आनंद लेते थे।
1: हमने ये तो सुना है, भले ही आपके यूनियन मिशन की बात हो, हम जब भी आर्म्ड फोर्सेस पर्सन के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह अपनी अंतिम सांस तक करते हैं, लेकिन जिंदगी जीना तो कोई आप लोगों से सीखे, क्योंकि जब भी आपको क्षण मिलते हैं ना, आपको यही लगता है कि कल हो ना हो, बस यही एक क्षण है, इसको जी लिया जाए और इसको खूब के साथ उसे एंजॉय करते हैं।
0: आपने बहुत सही बात पकड़ी है।
1: तो कहते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा एक दिन होता है, लेकिन उसे एक दिन में पल कैसे चुराए जाए वो आप इनसे सीखिए। जिंदा दिली अगर आपको सीखनी है तो आप हमारे भारतीय सैनिक के नौजवान या फिर वो ऑफिसर्स जो रिटायर हो गए हैं, जो कार्यरत हैं, बस उन्होंने एक ही बात जानी है कि जीवन अमूल्य है और इस जीवन को ना आप जिस तरह से जिस शिद्दत के साथ जीना चाहते हैं जिए, लेकिन अपने देश के प्रति अपने कार्यभार को या फिर अपने उद्देश्यों को कभी भी आप अपने आप से दूर ना कीजिए, आप फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी।

0: वेलकम बैक संदिष्ट सोल्जर्स, आज के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं। और हर बार की तरह ये शो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी किसी आर्मी ऑफिसर से बात करती हूं तो कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होने लगता है कि जैसे मैं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता को यहां पर आप सभी के सामने रख रही हूं। तो बहुत ही खूबसूरत पल, जिस तरह से आपके लिए उस तरह से मेरे लिए, क्योंकि मेरे सामने बैठे हैं कर्नल विवेक चौहान। कर्नल विवेक चौहान, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, ऑपरेशन विजय हम सबके लिए किसी न किसी मायने में, चाहे वो आर्म फोर्सेस में रहा है या नहीं रहा है, पूरे देश के लिए ही ऑपरेशन विजय कहीं ना कहीं बहुत ही दिल के करीब रहा है। ऑपरेशन विजय का आपके लिए, आपका चयन होना, आपका वहां पहुंचना कैसा सीधा रास्ता था, क्या हुआ था जो आप उस मिशन का हिस्सा बन पाए?
1: तो एक्चुअली मेरे डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन विजय में वाज अ लिटिल कॉमेडी ऑफ एरर्स, वो थोड़ी गलती से हो गया। तो मैं लेबनन से वापस पहुंचा ही था, ऑपरेशन विजय अभी स्टार्ट हुआ था, मई का वक्त था, और प्लेन्स में भी जो है डिप्लॉयमेंट थी, हम लोग अपने अपनी जगह डिप्लॉयड थे। तो उससे पहले हमारी एक दस्ता जो है लगभग 22 आदमी का, वो द्रास में चला गया था, डिप्लॉय हो गए थे, और उसमें से दो कैजुअल्टीज हो गई और दो हमारे साथी नहीं रहे। सो जब ये हुआ तो वहां ऑफिसर नहीं था, तो मेरे सीओ साहब थे, उनको लगा कि ऑफिसर होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर कैजुअल्टीज हो गए। तो किसी टाइम सुबह उन्होंने अपने बॉस जो जनरल साहब थे उनसे बात करी कि, और क्योंकि सीधे में बात नहीं कर सकते थे, उन्होंने बोला दैट मैंने एक ऑफिसर नॉर्थ भेजना चाहता हूं। जनरल साहब को लगा नॉर्थ मतलब प्लेन्स के नॉर्थ में कहीं डिप्लॉयमेंट, तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, वेरी गुड, और आज ही निकालो। तो वो आज ही निकालो का इफेक्ट ये हुआ कि सीओ साहब ऑफिस से निकले, मेरे को बोला 2 घंटे और आप निकलो सीधा द्रास के लिए। तो आपको समझना चाहिए कि 99 का टाइम था, मोबाइल फोन्स वगैरह वर नॉन एग्जिस्टेंट, कम्युनिकेशन इंटरनेट ढीला था, रिजर्वेशन वर नॉट इजी टू गेट। तो हमारे को अपनी थोड़ी बहुत पैकिंग करी, 2 हथियार पकड़ा दिए, एमिनेशन पकड़ा दिए, 4 ग्रेनेड पकड़ा दिए, और मेरे साथी थे जो मेघालय से, हमको बोला कूच करो, चलो पहुंचो। तो रीचिंग द्रास इन इटसेल्फ वाज एन एडवेंचर। वो क्या ट्रेन के गार्ड के कैबिन में पीछे बैठ के, एंड ही वाज मोर देन हैप्पी, बड़े खुश हुए कि हम जा रहे हैं लड़ाई के लिए, तो आप हम मेरे साथ चलो। लिफ्ट लेते लेते जो है हम द्रास पहुंच गए, 3-4 दिन लगे पर हम पहुंच गए। एंड इट वाज अ वेरी यूनिक टाइम। आपके शो में मैं उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो हमारे साथी वहां आज नहीं रहे बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस, और उनको भी जिन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया, क्योंकि दोज आर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, जब एक वैली के अंदर शेलिंग होती है या गोले गिरते हैं तो बड़ी दहकाने वाली गूंज होती है, बड़ा सीरियस टाइम होता है। सो इट इज यू नो क्रेडिट टू all the soldiers of the Indian Army who did a very impressive job, and जो लोग वहां जाते हैं they will understand कि high altitude में उन heights पे चलना, खाना पीना, लड़ना कितना मुश्किल है। वहां का एक interesting वाक्या सुनाता हूं। तो मैं पहुंच गए हम, तो ऊपर नीचे जाना पड़ता था अलग अलग locations में, तो हमारी गाड़ी जो थी उसके ऊपर कवर नहीं था, क्योंकि वो हमारा इक्विपमेंट वैसा था। तो मेरे ड्राइवर थे जगतार सिंह, जो सरदार जी थे। अभी हम जा रहे होते तो वहां हुक्म था कि सब जो है हेलमेट पहनेंगे, तो मैंने भी हेलमेट पहना होता, फिर मैं जगतार की तरफ देखता जो जिसने पगड़ी पहनी

0: अब जब शेलिंग स्टार्ट होती तो मेरे को गिल्ट हो जाता कि जगतार ने जो है वो पगड़ी पहनी है, उसने हेलमेट नहीं पहना, तो मैं अपनी हेलमेट निकाल के आउट ऑफ गिल्ट जो है अपनी बेरे पहन लेता। फिर पास में कुछ आवाजें आती तो मेरे को डर लगता और कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती कि हमें बोला गया नहीं हेलमेट पहनना है, तो मैं हेलमेट पहन लेता। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ देखता और मैं देखता उसकी तरफ, तो मुझे लगता ये तो गलत है, ये बिना हेलमेट के चल रहा है और मैंने हेलमेट पहना हुआ। फिर वही कहानी उल्टा, फिर बेरे पहनो फिर हेलमेट। सो दिस यू नो दिस बिकम अ वेरी ह्यूज लाफिंग फैक्टर फॉर जगतार एंड फॉर अदर ट्रूप्स ऑल्सो।
1: बट ये बहुत अच्छा उदाहरण है नाम नमक निशान का, कि जहां अपने साथ साथ अपने साथी की भी उतनी ही रक्षा करना जो आपके साथ उसी मिशन में शामिल है।
0: या आई थिंक दिस इज द इथॉस विच वी आर ब्रॉट अप विद, है ना। एंड व्हाइल इट वाज नॉट फनी दैट टाइम, टुडे इन हाइंडसाइट आई कैन लाफ ओवर इट एंड सो कैन जगतार।
1: जी बिल्कुल, जगतार साहब भी जब इस बात को सोचते होंगे तो उनको जरूर हंसी आती होगी। लेकिन जिस तरह की अपब्रिंगिंग, कहूंगी मैं यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि परवरिश हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं, हमने अच्छी परवरिश दी है, और इंडियन आर्मी भी इसी तरीके की परवरिश देता है कि अपनी रक्षा करो, अपने साथियों की रक्षा करो और वापस अपने साथी को लेकर आना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मिशन में फतह तो हासिल करनी ही करनी है, पर इसे कभी नहीं भूलना कि साथी को कभी आधा अधूरा यानी कि आधे रास्ते पर नहीं छोड़ना।
0: बिल्कुल, इफ यू आर रेडी टू सैक्रीफाइस फॉर अ फेलो सोल्जर यू कैन डेफिनेटली सैक्रीफाइस फॉर योर कंट्री। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग।
1: जी, अब मुझे एज अ हेलीकॉप्टर पायलट क्या चैलेंजेस रहे और क्या कोई ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना थल से एकदम आप वायु, थल से एकदम जमीन से एकदम आसमान में पहुंच गए, तो किस तरीके से एक आर्म्ड फोर्स पर्सन जब एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपने कर्तव्य निभाता है क्या बदलाव आते हैं?
0: सो मैंने एविएशन के लिए अप्लाई किया बिकॉज यू नो आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई फील एंड माय प्रिंसिपल इज दैट देयर इज वन लाइफ, एक जिंदगी है और हमें उसको वी हैव टू लिव इट टू द फुलेस्ट, है ना। ऐसा कोई चीज छूटे ना कि हम 20 साल बाद रिग्रेट करें कि ये कर सकता था और नहीं किया। सो दैट इज वाई मैं अप्लाई किया, मैंने एविएशन के लिए सिलेक्ट हो गए, 1.5 साल ट्रेनिंग करी अलग जगह पे और फिर मैं श्रीनगर में जो है अपनी पहली पोस्टिंग मैंने मांगी थी वहां के लिए ऑपरेशन एरिया के लिए, तो वहां पे मेरे को पोस्ट कर दिया गया। सो वो ये जो बदलाव है ये बड़ा काफी ज्यादा यूनिक है क्योंकि जब आप ग्राउंड फोर्सेस में होते हैं तो आपकी रीच जो बड़ी लिमिटेड होती है और जब आप एविएशन में स्पेशली आर्मी एविएशन में जाते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन की काफी ज्यादा उस टाइम पे थी और ऑपरेशंस काफी ज्यादा होते थे वैली में। सो पूरे कश्मीर घाटी अलग अलग जगह जहां लोग जाते भी नहीं है वहां जाने का मौका मिला, वहां अलग अलग ऑपरेशंस करने का मौका मिला। लेकिन सबसे यूनिक वो रहा कि जब कोई कैजुअल्टी हो जाती थी ऊंचाई में डिफिकल्ट एरियाज में, वहां पहुंच के उनको टाइम से हॉस्पिटल तक लाना वाज वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग इवेंट्स। देर आर मेनी जहां हम नहीं कर पाए बट द फैक्ट दैट वी वर एबल टू डू at some risk and sometimes quite a bit of risk is one of the few satisfying things that mere ko lagta hai in my career as a helicopter
1: kya khub hamare hum jo bhi kaam karte hain usme ek satisfying point zarur hota hai aur aapke liye satisfying point tha jahan par jeevan daan yani ki jeevan bachaya aur apne jeevan ko jab hum uske bare mein nahi sochte hain aur aisa sirf ek armed force person hi soch sakta hai ki jeevan ko to hatheli pe lekar chalte hain और इस उद्देश्य चलते कि मेरा जीवन तो दूसरे के लिए है।
0: और इसका यू नो आई ऑल्सो वॉन्ट टू फोकस ऑन कमराटरी, जो हमारी आपसी मिलाप और एक दूसरे के लिए जो करने के लिए, ठीक है, इवन एट प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिस्क। तो उसके 5-6 साल बाद मैं राष्ट्रीय राइफल्स में था और एक टुकड़ी के ऊपर था, कमांड कर रहा था, ऑपरेशन चल रहे थे जंगल में और कुछ कैजुअलिटीज हो गई, 2 आदमी हमारे उनको गोली लग गई और एक उनमें से बहुत क्रिटिकल था, बारिश का मौसम था एंड उनको इवैक्यूएट करना बड़ा मुश्किल रहता।

0: क्योंकि रोड दूर था, तो मेरे एक साथी थे जिन्होंने मेरे साथ एविएशन में पहले सर्व किया था, तो उनको मैंने फोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है, वी आर इन अ डिफिकल्ट एरिया, और अगर यहां से नहीं निकाल पाए तो ये शायद नहीं बचेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ दैट कमराडरी, आपसी जो एक दूसरों के करने की जो जिद होती है जिसको बोलते हैं, उन्होंने बोला बाकी तो आप करते रहो जो भी आपका प्रोसेस होता है हेलीकॉप्टर डिमांड के लिए, लेकिन मैं यहां से टेक ऑफ करूंगा. और वो आए ऐसी जगह पे आए जहां 200-300 मीटर दूर गोलियां चल रही थी, ऐसी जगह लैंड किए जहां पे खेत में पानी था, लेकिन उन्होंने एट प्रोफेशनल रिस्क एट पर्सनल रिस्क ये किया. सो यू नो दिस इज पार्ट ऑफ द इथॉस, दिस इज पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्मी, दैट फॉर ईच अदर देर इज अ लॉट ऑफ रिस्क, लॉट ऑफ असिस्टेंस दैट वी गिव टू ईच अदर.
1: कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखा जाता होगा ना, यहाँ पे भी एक तरीके का एक्सचेंज है. आप अपने फेलो को कोई डिसीजन लेते हुए, कोई निर्णय लेते हुए, कोई जिम्मेदारी लेते हुए सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता था. दिस ऑल बट रिवॉल्व्स अराउंड यू.
0: यस, एंड इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस टू द टू योर सोल्जर्स, टू योर कॉलीग्स, कि यू नो वी आर नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, हमें पीछे नहीं छोड़ेगा कोई. ठीक है, अगर आज हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, देयर इज समबडी लुकिंग आफ्टर अस. So that's a very strong feeling and that's a very strong ethos.
1: जी, इसके बाद फिर राष्ट्रीय राइफल्स में आप रहे, जैसलमेर, दिल्ली, यहाँ सभी आई मीन पोस्टिंग्स में आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया. 23 साल बाद रिटायरमेंट, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, क्या आज भी इस बात को महसूस करते हैं? और जब रिटायरमेंट लिया तो क्या उस रिटायरमेंट फेज से बाहर निकलना आसान था, मुश्किल था? ये जहन को मालूम हो रहा था कि कुछ छोड़ आया हूं?
0: एक्चुअली रिटायरमेंट से पहले ज्यादा मुश्किल था,
1: और रिटायरमेंट से
0: डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल था. एंड अभी आपने सोशल मीडिया और बाकी जगह भी देखे होंगे, देयर इज अ यंग ऑफिसर हु हैज टेकन रिटायरमेंट. इट इज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन. आप एक जज्बे के साथ फौज में आते हैं, उस जज्बे के साथ फौज में रहते हैं, एंड इफ यू हैव टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट environment, from that उस group से आप निकलना चाहते हैं, that is a very difficult decision. So it took me almost 3-4 months of sleepless nights to decide कि छोड़ू या नहीं छोड़ू. But finally जब मैंने छोड़ा, उसके बाद actually मुझे realize इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास time नहीं था. I went to Indian Institute of Management Ahmedabad, एंड वो खत्म होते ही मैं न्यूयॉर्क चला गया. वहां पे मुझे जॉब मिल गई यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में. सो दैट जब तक मुझे जो रियलाइज होना चाहिए था, जो फ्री टाइम होना चाहिए था फौज से निकलने के बाद, कि मैं हूं, कहां हूं, क्या कैसे हूं, वो रियलाइज हो नहीं पाया. एंड यू आर राइट, वंस एन ऑफिसर ऑलवेज एन ऑफिसर, और वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर. आज भी आई फॉलो द सेम टाइमलाइन. सुबह उसी टाइम उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शेक ऑफ दैट हैबिट.
1: जिस तरह से इंटर मिलिट्री अकेडमी में अंतिम पग उसको पार कर, यानी कि उस अंतिम क्षण तक ट्रेनिंग का प्राप्त कर फिर अपनी सर्विसेज देना, और फिर अंतिम सांस तक सिर्फ भारतीय सेना के साथ जुड़े रहना, इसके बीच का जो समय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है. तो अंतिम सांस तक जो व्यक्ति सोच लेता है कि मैं तो भारतीय सेना को ही समर्पित हूं, उसके लिए ये डिसीजन लेना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, निश्चित रूप से. लेकिन मैं जानना चाहूंगी, व्हाट आर प्री मेच्योर रिटायरमेंट्स, अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो?
0: सो प्री मेच्योर रिटायरमेंट, बाय द जो नाम जैसे सजेस्ट करता है, इट इज रिटायरमेंट, applying for retirement or taking retirement before your mandatory service period or your mandatory bond period has expired. Permanent commissioned officers के लिए 20 साल minimum requirement है. उसी प्रकार soldiers के लिए अलग अलग rank पे time निर्धारित है. So sometimes because of personal reasons बड़े सारी it's a life of sacrifice. And sometimes because of various compulsions or personal reasons, a man is forced to break away from the organization or go away from the organization, which is a very difficult time. So you apply, and if the organization

0: कमीशन अग्रीज ऑन द जस्टिफिकेशन कि हाँ आपकी बात में मेरिट है, दे विल लेट यू गो बिफोर योर मैंडेटरी टाइम. सो दैट इज व्हाट प्रीमेच्योर रिटायरमेंट इज.
1: जी, बहुत सारे हमारे पास यहाँ संदेश आए हैं एंड आपको बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत मैसेजेस के जरिए अपना प्यार अब तक बरसा रहे हैं. यहाँ पर अनिल कुमार हैं जिन्होंने संदेश भेजा है उत्तराखंड से, और इन्होंने आपको नमस्कार कहा है, विश्वकर्मा पूजा की कुछ शुभकामनाएं दी हैं. बिल्कुल, एक ऑफिसर को जिसने आर्म फोर्सेज में अपना दमखम साबित किया अपने कार्यकाल में, उसको विश्वकर्मा पूजा का बिल्कुल मतलब पता है, क्योंकि उसके लिए सारे अस्त्र शस्त्र सारी मशीनरी ही है जो जिससे उसे सशक्तिकरण महसूस हुआ है. तो विवेक सर, देश की सेवा के लिए आप जो कर रहे हैं, तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है. जय हिंद, जय भारत. तो आज भी जब इस तरह के संदेश मिलते हैं, यू आर द हीरो, द रियल हीरो, हम यही कहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको लोग इतना प्यार करते हैं, काबिले तारीफ है. संदेश यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया है, सबलपुर से नाम चारुण है इनका, जय हिंद इन्होंने लिखकर भेजा है. पंकज का अमरावती से आया है संदेश, कहते हैं कर्नल विवेक चौहान रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर, जिसे बातचीत बढ़िया लगी है और आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, और ऑपरेशन विजय में शहीद हुए सभी सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि. और आकाशवाणी एफएम रेनबो के माध्यम से तो हम नित्य प्रति सभी सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को नमन कहते हैं कि आपकी कर्तव्य निष्ठा हमारे लिए सर्वोपरि है. अगला संदेश यशवंत का आया है महाराष्ट्र से, और ये भी आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं यशवंत. संदेश हमारे पास आया है तमिलनाडु से, शूरवीर सेना नायक अधिकारी को मेरा प्रणाम, जय हिंद विजय कुमार वी का संदेश है, और जिन कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान, हमारे सैन्य अधिकारी काम करते हैं, अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं हमारे ये दोस्त. जय हिंद लिखकर भेजा है दीपांशु ने भटिंडा से, जहां आप पहली बार एज अ कमीशन्ड ऑफिसर तैनात हुए थे. तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक एफिनिटी हो जाती है, जैसे कि जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी का नाम सुनते ही मेरी आपके साथ हो गई सर, ऑफिसर के साथ हो जाती है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होता है. अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके माता पिता इंडियन आर्म फोर्सेस, और अब आपका परिवार जिसमें खास तौर पर आपकी स्पाउस आपकी बेटर हाफ है, आपको ऑफिसर बनाने में आपके माता पिता का आर्मी का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करने में आपकी बेटर हाफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी. आपके पीछे आपका घर बखूबी वैसा ही चल रहा होगा जैसे आप उसे छोड़कर आते होंगे जब अलग अलग पोस्टिंग्स के लिए अकेले जाते होंगे. तो क्या कहना चाहते हैं?
0: सो आई हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर जो वाइव्स हैं हमारे सोल्जर्स की, हमारे ऑफिसर्स की, बिकॉज यू नो इट इज उनकी सपोर्ट के बगैर आप ठीक से काम नहीं कर सकते. अगर आपके घर से पीस है, आपकी वाइफ जो है आपके डिसीजन सपोर्ट करते हैं, कभी डिफिकल्ट डिसीजन होते हैं, कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास काम है, आपको रिस्क लेना है. सो दैट इज अ सेक्रीफाइस फॉर द फैमिली. And I have absolute respect for the ladies, for the wives of all our soldiers who let them go, who gladly let them go to their field postings for their deployments, for their trainings, bina ro dho ke, bina ruckus create kare hue, bina complaints kare hue, aur unki absence mein akele ghar sambhalna, bachchon ko padhana, bachchon ko dekhbhal karna, parents ko dekhbhal karna, सोशल एंगेजमेंट जो है उनको सिंगल हैंडेडली हैंडल करना, दैट इज अ क्रेडिट टू द लेडीज, टू ऑल ऑफ देम, एंड आई हैव एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर देम.
1: तो इसका मतलब यह हुआ कि वो आप ही कमांडिंग ऑफिसर रही हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, घर के दरवाजे के अंदर घुसते ही आप जो है अपना रैंक जो है दूसरे अपनी स्पाउस को पहना दीजिए और सैल्यूट कर दीजिए.
1: वाह क्या बात है. तो ऑल दी आर्मी ऑफिसर्स हु आर लिसनिंग टू अस, जितने भी सुन रहे हैं, रिटायर भी हो चुके होंगे, तो शायद आपकी बात से वाकिफ होंगे कि सच में ऐसा ही होता है, और शायद एक घर चलाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को सिविलियंस को भी अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए. सो मैं यही कहना चाहूंगी कर्नल विवेक चौहान, यू आर नॉट रिटायर्ड. बहुत सारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप समय समय पर अलग अलग कार्य करते हैं, क्योंकि आपका मानना है कि एक ही जिंदगी है, बाद में जीवन में रिग्रेट्स ना हो इसके लिए जरूरी है कि जो मिलता जाए या जो आप अपनाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसे पा लीजिए. हमारे यूथ जो है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
0: मैं यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूंगा,

0: Please be proud of the defense forces because they do sacrifice a lot on your behalf. And they feel proud of the fact that whatever they do it for the future of our country and for the people of this country. So support them, be proud of them, and that is how you can thank them for their services.
1: जी बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात और बहुत ही प्यारा संदेश. और अब जो नगमा मैं यहाँ प्ले करने वाली हूँ निश्चित रूप से उन सभी वाइफ्स के लिए है जो जिनका संबंध आर्मी से है, आर्म फोर्सेस से है, आर्म फोर्स्ड पर्सनल से, वो उनकी अर्धांगिनी है, स्पाउस हैं. तो हमारी ओर से आपको, आपके लिए ये गाना. और एक बार फिर से हम धन्यवाद करना चाहते हैं कर्नल विवेक चौहान का, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, पर जैसा कि उन्होंने खुद कहा, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, क्योंकि ऑफिसर जिंदा दिली के साथ जीना चाहता है और दूसरों की जिंदगी को आसान बनाना चाहता है. तो मैं गीतिका आपसे लेती हूँ इजाजत, होगी आपसे फिर मुलाकात.

सामिने मोहतरम, अभी तक आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे संदेश टू सोल्जर। मीडियम वे पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, अब से लेकर रात 10 बजे तक आप हमारी नशरियात मुसलसल इन्हीं मीटरों पर सुन सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। मीडियम यू त्रुग्या नहीं शुजबी नजबी केलो हर्ट्स दोनों मीडियम यू स्तोंचिगना अगबग्या नहीं शुजबी नजबी केलो हर्ट्स FM 100.1 MHz दोनों मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR कदियूफ आकाशवाणी करगिलिन दिनी जखपो ब्रस्पुत सप्तम्बर इल्जे चुबदुन यंग सने स्वी लोस्तुंग स्तुंगिसना इंगिशूर सस्त्रुक आकाशवाणी करगिलिकना दिनिंग प्रचुपोयत पी प्रोग्राम ने सिर्पो खुरे मचं यंग यम तिशिते थुनसित नचिशितने प्रोग्राम थना बखन सरमचुनसे ककफोनून अचिनुमुन गमी खितमतला जुन इस्लामी बल्टन पो प्रत्मचन सुंशिक।

0: اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس.
1: قالوا إنا تطيرنا.

क्या मैं अल्लाह को छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं? अगर अल्लाह मेरे हक में नुकसान करना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सके।

0: Resumentes sponsor program chiga ngin in chigut pin medium vivika hajas akashwani kargili kana enton nagran chut waspo shami bajetruk chindu kasata akashwani dehli kana hindi na angrezi khabarun rilevet rilevla gair baza
1: namaskar akashwani samachar ke sath main vishal sharma प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विकसित भारत जी ग्राम जी योजना विकसित गांव के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है इसका पता लगाने का निर्देश दिया है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हो। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इससे शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों को और उपहारों की नई नीलामी क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 15

0: सौ वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्पू में भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने श्री तोब्गे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंकरोधी अभियान में दो आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7:30 से नई दिल्ली में खेला जाएगा। भारत पहले ही 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said India is emerging as a reliable destination for global manufacturing and is preparing to meet new challenges. Mr. Modi stated this while inaugurating the 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi today. The Prime Minister highlighted the growing demand for artificial intelligence, saying the focus is now shifting beyond transistor size to overall system integration, including memory placement and heat management.
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: लेटर एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द साइडलाइंस ऑफ द इवेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर Ashwini Vaishnaw said India's semiconductor design capabilities are recognized globally and Semicon 2.0 will focus on promoting semiconductor design companies in the country. The three-day conference and exhibition bring together global semiconductor and electronics ecosystem to foster collaboration, drive innovation, strengthen manufacturing capabilities, attract investment and develop future-ready talent. Prime Minister Modi today said the BJP government in West Bengal aims to ensure that not a single eligible woman is deprived of the benefits of the Annapurna Yojana and is working relentlessly towards the goal. Mr. Modi stated this while virtually addressing a gathering in West Bengal on the occasion of the release of the 4th installment under the Annapurna Yojana, providing 3,000 rupees per month to around 1.5 crore women.
2: आज विश्वकर्मा पूजा का पावन अवसर भी है। मैं आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इसी पावन समय में आज बंगाल में एक नई परंपरा सशक्त हो रही है। आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता
1: हूं। ऑल पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांजैक्शन विल रिमेन फ्री, एनेबलिंग सेंडिंग मनी टू फ्रेंड्स, पेइंग एट शॉप्स और स्कैनिंग अ क्यूआर कोड विदाउट एनी चार्जेस। सोर्सेज इन द गवर्नमेंट सेड वेंडर्स अर्निंग अप टू 1 लाख रुपीज पर मंथ थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड्स विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट जीरो चार्जेस। दे इन्फॉर्म दैट ऑल रुपे डेबिट कार्ड लिंक टू यूपीआई ट्रांजैक्शंस विल ऑल्सो कंटिन्यू टू रिमेन फ्री of any charge. As per the sources, around 96% of person-to-merchant P2M UPI transactions will remain unaffected. However, transactions above 2,000 rupees in essential sectors such as railways, fuel and others will attract a flat merchant discount rate of 5 rupees per transaction. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan has directed officials to explore how the Viksit Bharat Ji Ramji scheme can contribute to building developed and self-reliant villages. Addressing a national workshop on the scheme, Mr. Chauhan stressed that besides generating employment, the scheme should create durable assets that benefit rural communities in the long term and strengthen the rural economy. The BJP has launched a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan from today to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday. The campaign focuses on highlighting his commitment to public service.

0: सो में सोमा कारण चिक चिक इन कि जैसे जिम बेनेट खन चिक या आर्टिस्ट चिक हीरोइन चिक हीरो एक एक्टर चिक एथलीट चिक या दक्षा हार्ट अटैक का चेनुक दोनों थोंजे बॉडी वो अभी सम को मोटा आनो चमें या को फैमिली हिस्ट्री अमित ना को स्टेंट्री लाइफ दुख से उत्खन अमित जिम बखन पॉलिसी बेनेट चिक दक्षा ने नमजा दोन ला थों दोन ला कारण चिक चिक सपोस एक स्ट्रेस जरे दक्षा ने नमजा दी तनाव यानी कि जहनी तनाव बड़े चचस्पो स्ट्रेस पोस बसे एक कारण लॉन्ग सोम छचिन और गामी या ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना ब्लड प्रेशर बड़े ही सोचो ना दो लोग कम चेस मन मजाना या का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जी मावा ना करतो कोई ब्लड प्रेशर पो कंटिन्यू थो से लूज ना करतो जैसी क्वा हार्ट अटैक यों में चांस है और यंबो यंबो शुगर पेशन उन ला दी जर्मो यों में चांस खेमो चाचिन क्योंकि खोई ब्लड खोई बॉडी अनु दे ब्लड सर्कुलेशन जाके ने आर्टरी यूनियन ने क्रक डुल बिदर साउंड निजर्मो एथेरोस्क्लेरोसिस रहता दो युक्सपा पैदा छचिन छाना गा सुचिगा शुगर इजर्मो ना दो कंट्रोल वक्स का शुगर का तो मचाना खोंग यो में जा छचिन बिर
1: कससर फेसबुक वसे यारस देमो वसे मोस किंग अति लाइफ स्टाइल पो तेस मनार देमो वसे गा मन जक्तन जक्तन गता डुलचा एक्सरसाइज बचा लास वाशिक बचा मन खर्चा निन सुखा ताकि अति बॉडी फिट लो सुख अति बॉडी फिट लूस न कतो माता दी हार्ट अटैक जरे दी स्नी इजर्मो गता कम छचेन सुख कसानी ती लाइफ स्टाइल पुंगतेस गती खंगमा जेरिया गतेस गती दरी गती लाइफ स्टाइल पुंगतेस गजुक चिके बार गुशेन सु गजुक चिंग गते जक पर गुशेन दु सोस गतेस नि जर्मोनी कना गता थारिंग लुस पे मिना
0: बिल्कुल लो यारस बेहतरीन स्पर आर्टिस्ट नमो जुला मता तसन जैसे कि जर फैमिली हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री ना गा सूची के आते हमें गा जवानी अनु 40 साल पे तो दुल्ला हार्ट अटैक जर्मे क्या कोरोनरी आर्टरी जब मेक व्योत न करतो या सूच का ब्लड प्रेशर अतामा मना वक्त का थो से हमेशा लुस्पत ना तो दोनों यंबो खोआ या हो सकते शुगर जब मेक खोए फैमिली हिस्ट्री आ व्योत न करतो दोन ला एहतियात पो क्यों बरोशिन यानी एहतियात पो मतलब अक्सर डिस्कस बेद देन चोक्स ला सेडेंटरी लाइफ स्टाइल पोजेस मतलब जैसे कि मन फिजिकल एक्टिविटी मचा लुस्का नहीं मिलना छाना दी फिजिकल एक्टिविटी मचा कनुला जैसे कि जूस होता है छचिन नमो आते उसको ऑफिस नयों सना सुबह या शाम एक या दो घंटा या जॉगिंग ची बच्चा साइकिलिंग बच्चा गार्डनिंग बच्चा या मसन स्विमिंग भी बेस्ट एक्सरसाइज है सुबह पॉसिबल होता है या गेम शीर से चाह या खामी लाशी बच्चा लगला शी बच्चा मन में ना खोर बचा बांग तमा बचा डुलचा जून गति जमींदारी फिजिकली लकपा ने भी लशी कमाई का डुल भी लशी फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी या जिम अच्छा चा ड्यून योगा बचा जिम अच्छा चा ड्यून गमा फिजिकल एक्टिविटी नमोज दाउचिन छाना सेडेंटरी लाइफस्टाइल सु आयो ना दोनिस डी ची सोनिया ना चिक चिक निस बार गोशिन और यंबो यंबो खो गाड़ी जहां तक हो सकता है गाड़ी इस्तेमाल बा मायन मा मरगोस पकवा बा यंची उतना जैसे थकने लिया गाड़ी और दो किलोमीटर से जब सेना ऑफिस सपोर्ट उड़ी जाना कोई बिजनेस उतना बिजनेस पर सपोर्ट उड़ी जाना स्कूल ची का छाची ना मतलब गाय जगह चलास बात ना खो देखना बुरी डूली छाना बाजार लो शॉपिंग ची बात ना या गाड़ी मल्सिमल ना खेर पर डूली छाना खामा इन नम नम मौका थोत ना खो डूल भी कोशिश बने तो ड्यू लखमो छाचिन और बिजी लाइफ स्टाइल ड्यू जरूरी और लिफ्ट चिग्गा बिल्डिंग चाहे उतना बाहर जगह ना आता ना था बिल्डिंग में लिफ्ट में तो रहता चाहिए लेकिन बाहर जगह ला ऑफिस हमेशा और लस का शॉपिंग का होटल चाहना हाटी चीज चाहना उसके लिफ्ट होते हैं ना लिफ्ट पहुंचे प्रेफर बार बोशीन थेम्पस दूली चाहिए चाहना जो उसको देने चाहिए ना फिजिकल एक्टिविटी बढ़े चाहिए जाने तो उस पक्षों से मतलब स्मोकिंग सुस बेहतर सिगरेट तमाको तुम चाहो बिल्कुल मज़ेरीन दी बिल्कुल नॉन मतलब इफेक्ट हो चीन की ब्लड वेसल उन्हें हेल्थ पोस सेहत पर यानी कि लुशमिन जाने सिगरेट तमाको बिल्कुल ड्रग्स से बंद बचा
1: कैसा
0: जाना जाने तो उसे ओबेसिटी भू ओबेसिटी यंग देना इनकी मोटापा का तो बड़े ही समस्या होता फिजिकल एक्टिविटी बच्चा और मोटापा नहीं हम बहुत ही मोटापे कारण चीची डाइट की वजह से भी छचिन तो डाइट को ज्यादातर पो ऑयली चीज कार्बोहाइड्रेट खान चीज यानी कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होती वो ब्रश हम और गति मैदा या ध्यान रखो शुगर ड्यून बिल्कुल प्योर कार्बोहाइड्रेट युद्ध शुगर चीज ड्यून एवॉइड बचा ड्यून जगह का कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसी यानी कि जैसे कि अति लोकल नसफेज सुन मसन या तो दोनों बाकी ब्रश या ब्राउन राइस रिंचोचिन दो जलवा छचिन या तो मैंने अति ब्राउन टकी न संग मेदे टकी मजा ब्राउन अटा जिनचिक नकपुर छदे टकी मजा ब्राउन छथचिन देनुंग अतं क्रे शुलु एम्बोटे सोचिन चाना दोस बसे फाइबर कंटेंट पदे फेयानु बक्फेयानु खिमोचिन योत्पन दी ब्राउन नकपोटकी मरपोटकी छचिन करपोटकी बसे ओदी ब्राउन अटाना टकी जाने का तो या

0: 너의 자기가 너는 형 지직 바토 캄바스나 대제가 아 김우 local finance 아타 되는 자차 or pets na mari risk no risk po kambase de jay ka chemo zyada tar chiz acha gan sabzi zacha dal zacha
1: kaisa
0: to duniya no ko complex carbohydrate aur protein po zyada chin kar sugar matra kam ho chin khara bilkul kam se kam 3 poisons in mera chi khara matlab nutke chen
1: chin
0: bilkul kam se kam istemal baro chi po cha kam zaro chin chu white 3 white poison 3 zar bana chi cha sang karpo yo da kharang karpo yo da so meda di sumpo medical dan mi bakery items so sehat ife bilkul muzir so di sumpo kam base de jayega fal fruit jacha ga qismi fruit chi na di fruit ma ta no ta jacha bilkul
1: yo chamin
0: har qismi fruit pur galbain fresh fruit mar da moin do na dry fruit sa galain aur de ana chola sabzi kemo jacha vegetables green leafy vegetables ga qismi sabzi jana gajar salad khira gajar ngata ya masalan salad ya yo chana do na ngambo yo dal risk po kemo jana galbain chu buya juice bas obesity aur cholesterol pon control chachin di iska kam chachin
1: कसनी दी गता दरे दरे आम गता थोन दुख नति जवान होने आनो को गान बॉडी फिट यो लस बाद या मना खों दे सब चीज के कोई लाइफ स्टाइल में खची का थोन दुख की गता खो हार्ट अटैक सो या सी जर में गो दुयो जरे दे मेन एक एक गा सो शिक दुख सर दे एक एक स्ट्रेस
0: दक्षा दो थम छेदबु की दक्षा ने नमजा आता स्ट्रेस वो सुनते सुकुल ले जाके ने फ्री के ने तंखन ची शर्मा छप्पा बड़े सोसे जमाने अनु मते जरे आम मिया दियो पता है दक्षा की स्नापा सी जिंदगी आम फैसिलिटी में पिन मार खुशी होती खून बिल्कुल आराम से सोसाइटी और समाज यहाँ हमसाय ने वो रूपो ने अम्बो अचुनो ने अम्बो अचनमो ने अम्बो
1: थे
0: सिंपल फैसिलिटी में पिन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में पिन ना लाइट फैसिलिटी में पिन दट और टेलीफोन मोबाइल फैसिलिटी में पिन मार खो जिंदगी मन खुशहाल पिन दुचे खो स्ट्रेस पो स्ट्रेस अनड्यू एक्सपेक्टेशन चीज अक्सर मतलब फ्री का फलान पर्सन के 90% क्यों मोशिन सब अजर 80% क्यों मोशिन 90% क्यों मोशिन 100% क्यों मोशिन जब ना हर इंसान एक किस्म का सुन सु मुकाबला चाहू क्लूशिन यूज को स्ट्रेस डेवलप चाचिन देर गपन आता जवान उन बुसा बो सा जॉब इज स्ट्रेस नौकरी थोबर गोज बिजनेस शिप बार गोज कामयाब चार गोज देर गपन प्रॉपर्टी जो चेक नंग खाम एक दूचोक शो मुर गोज चेक देर गना खुआ बस्तों प्रेशर चीक देर गपन खुआ मसन जॉब या प्रमोशन प्रेशर चीक यानी कि हमेशा एक कंपटीशन और प्रेशर चालू सत यूज बस से मी अमा स्ट्रेस चालू शिन सुख स्ट्रेस पोस्टी सचिन सुने जरूरत दे कारण पी चुकी श्रीवास्तव जैन मसलन 40-50 साल बच्चे दुल लखो डेथ हो जैसे कि आती हीरोइन हीरो खचिक एक्टर खचिक सिंगर खचिक क्रिकेटर या फुटबॉल प्लेयर खचिक जवानी अनुको मतलब हार्ट अटैक हो सशी दोनों लची सोने दरबाना खो ओ भी समझ पिन खो जीवन उच्छाद खो डाइट पर गला जाते लेकिन दो सिगरेट आम मिथुन मत पिन लेकिन दो ला ध्यान चूस पकों ब्लड प्रेशर ना ठीक हो तुक तुक डायबिटीज समझ पिन लेकिन कारण पिची तुक जबना स्ट्रेस एक कारण दुक चाहे स्ट्रेस पो खो लाइफ यंग कंपटीशन इफ या खो आउटपुट गला ताम इफ या राई कंपटीशन पर ले गया ना खेमो चाहना हमेशा स्ट्रेस आम लुस पचुक स्ट्रेस पर फ्लाइट fight or flight response chin maslan the stress pokane mo to bana snap se namza na falla ati genetically do din chu jung ata jungle na dupi namza na falla de jana ga insan che sher chi ona ya zkhwa yang qasma khatre chana khonta sun su jin shek chana de jana stress mo chu de jana fight or flight re response mo chu body anu insan che de jana jungle na dupi zamane ga chu khatre balu chi kana sher chi kana yara tribe chi kana jin shek sun se jan la khatre chana या खोज जिंशा ता मचुक दुन ल दुसे लोचा न लोचा में ना प्राइस रे शोर मच दे जन खोय बॉडी अच्छी छात सुने जब ना कोर्टिसोल दर का हार्मोन जे सिक्रेट छात दे कोर्टिसोल दर कने हार्मोन पे वजह का बाकी अति फंक्शनिंग गमा चेंज छ चिन बॉडी यानी कि ऑक्सीजन लंचस पो हिस पो तेज होचा धड़कन तेज छचा ब्लड प्रेशर बढ़े छचा ताकि खोआ फैट बेकाबिल छचा या खोज शोर बेकाबिल छचा क्विक मेजर सेकंड्स से अंदर रिस्पांस फ्रॉम अच्छा कोर्टिसोल हार्मोन में ती बॉडी पैदा छा ना इंसुलिन पों क्यों छा चा तो चोदा ग्लूकोज कंजप्शन पों बॉडी फास्ट रेडी कर छा छा ना दी रिस्पांस पुछा ना मगर दे खतरा और उस पर टले छा छिक यंग नॉर्मल छा छु ठीक छा छु दक्षिण दी कंपटीशन है जमाने नु कंपटीशन पुलिस बना या चिक चीज लास्ट बाद कोई ऑफिसर पो मने डिमांड चिक है मैं यूथ कंपनी चिया खुरी प्रोडक्ट पो सेल बे कंपनी मतलब कामयाब चे चैलेंज शिकप ना दी स्ट्रेस पो हमेशा लुसिन जो क्रॉनिक स्ट्रेस यानी एक घंटा चाह खत्म

0: बदलना, चार घंटा, पांच छह घंटा, दिन भर या हफ्तों में या महीनों में ख्वा कंटिन्यूस बना दिस स्ट्रेस पर बस एक ब्लड प्रेशर बड़ी छह चिंसुक या दो मैंने ख्वा तनाव लुस पना ख्वा जक्षिक हार्ट अटैक यों चिंसुक कि खो थोंजुए खो जवान थोंचा मैंने नंगस पर कोई ब्लड वेसल सुनी सेहत पो बिल्कुल 40 से उम्र का कोई 60 साल पचो 70 80 साल पचो आपो चो दा पीजो सी चेंज पो कोई बॉडी ना होसा यों लुशिन सु 30 साल का को ब्लड प्रेशर बड़ी छे चिन सु 20 साल से 30 साल 30 साल से 40 साल के पे कोई ब्लड प्रेशर नालियन मशेस पे का गक्सन गक्सन सो से कोई उम्र पो ताकि सुनसे न सा लेकिन कोई एजिंग पो यानी कि नंगो से मेटाबॉलिज्म पो कोई नंगो से बॉडी हालत पो ऑर्गन सुनी कंडीशन पो 60 साल 70 साल 80 साल पचोसी सो सो चिन सु चाने ड्यूल स्ट्रेस रिचिन बो और द स्ट्रेस पर कम बेहतर कोचिंग जरना एक तो मेडिटेशन जरे दोनों कंपटीशन है हमेशा डी फ्लाई डी रिस्पांस पर डी कंपटीशन के दौर पर मैनेज बचा डीप ब्रीदिंग यो यंग टेक्निक चीची की जरूरी चीज है नु की ज्यादातर पुखो नित पो 6 से 8 घंटा 7 से 8 घंटा हमेशा डेली को साउंड स्लीप यानी कि मन हेल्दी साउंड स्लीप लेने की कोशिश बार कोशिश सु तो नित पो कम लेने दे जाए का पने कमाई बागा लश बुक पर जरे नित पो मत मा बना तो कुले कुले को सेहत पो खराब छ छ चाने देन जो स्पो या चीची की स्ट्रेस कम बना तो को मतलब एक्सरसाइज भी एक किस्म का स्ट्रेस मेडिटेशन सो स्ट्रेस लेवल पो लो जक छ सु सोसाइटी हम फ्रेंड ने बो अच्छा ने बो चुनो ने बो फैमिली ने बो ज्यादा से ज्यादा एक घंटा दो घंटा तीन घंटा टाइम बिताई बच्चा दो सौ स्ट्रेस कम
1: कसा सर गति वक्स पोंग मांग में तमिन दुख आखिरी का नजर आ दिया वजूद की दी गति स्नी जर्मो जब से का या गति लाइफ स्टाइल वजह का गति स्नी जर्मो गचुक गति कंट्रोल बरगोशीन है गति मीमा सुन ला गचुक हागोरी प्रोजेक्ट
0: ngati mewa sala nar chelang zar na mata sna pasi ata pui ga noro chi shi pin na ate don yang gyurja khong se ngati zindagi anuk sna pasi ta pe ga du pe koshish ba roshin ga positive chi spo aur baki daksan ni namze ga positive chi shi na do mata se ro pase lai se ngati zindagi balance life chi guzar be कोशिश बचा ताकि रंग हेल्दी रुसुक और रंग हेल्दी रुजना यानी जंजो सुनना मदद चौक फायदा चौक और ध्यान चौकदा अतः सोसाइटी अनंग बरकरार सेहत पर रुसुक
1: कसा सर एरा यंग फेरे चीची को यूसरिंग मजरे तेरंग आकाशवाणी करगिल स्टूडियो के ते अति मीमांग सुनला दो चौक स्टॉपिक निका हवो तमी फिला एरा उजू सरिंग मो बाशिस ध्यान अंगेंबो दिरिंग दिलुक्सी प्रोग्राम पो थमा थोन और ध्यान मयो ध्यान तार दे मो सुरी दुख तुक इंशाल्लाह नन में लुसना यों मेट पे प्रोग्राम पे यं तांग ना यं थुगेत दे मन पो गचन सा इज इन चस दे बोज या जू खुदा नर सखमानी फगरे
2: दर सखमेंटिस प्रोग्राम गिने चिकुत पिन रदेलुक्स میڈیم وی وکد یو آکاشوانی کرگلین وقص بو شامی بجردون سونسو کسط پروگرام گین مزد اچھے نمونی فیه

0: के निफाज को यकीनी बनाया गया है। खसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान के तहत पेश है ये रिपोर्ट।
1: 5 अगस्त 2019 को मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा देने वाली दफा 370 की तनसीख ने खित्ते के इंतजामी और सियासी ढांचे में वाजिया तब्दीलियां लाई हैं। ये तब्दीलियां शहराओं, टनलों और रेलवे पुलों की तामीर के साथ जमीनी सतह पर साफ नजर आ रही हैं और इनकी बदौलत मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी बहुत हद तक बेहतर हुई है, जबकि बुनियादी ढांचा भी जबरदस्त मजबूत हुआ है। 2019 से पहले की निस्बत से जहां सियाहत से जुड़ी सरगर्मियों में इजाफा दर्ज किया गया है, वहीं पत्थरबाजी और दहशत पसंदी की सरगर्मियों में नुमाया गिरावट देखी जा रही है। खसूसी दर्जे की तनसीख से जम्मू कश्मीर में सनअती सरगर्मियों और सरमायाकारी में भी तौसी हुई है, जिसकी बदौलत रोजगार के दरीचे भी खुल चुके हैं। मौजूदा सरकार गुज़िश्ता 7 बरस से जारी इन इस्लाहाती इकदामात की रफ्तार को जारी रखे हुए है, ताकि तामीर और तरक्की और पब्लिक सर्विस डिलीवरी की ये रेल अपनी पटरी पर यूं ही रवा दवा रहे। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए मैं महमूद अहमद खान।
0: इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 17 अक्टूबर तक जारी रहने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत मुल्क भर में सरगर्मियां शुरू की हैं। पार्टी की जानिब से आज अभियान के पहले दिन सेवा दिवस मनाया गया, जिसकी रूह से मुल्क भर में खून का अतिया देने के कैंप मुनक्द किए गए। पार्टी के कौमी सदर नितिन नबीन ने नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर इसी तरह के एक कैंप का इफ्तिताह किया। आज से ही मुल्क में स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम भी शुरू हुआ। इस सिलसिले में आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में एक तकरीब मुनक्द हुई। इस मौके पर न्यूज सर्विसेज डिवीजन के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन ने आकाशवाणी के अमले को स्वच्छता मुहिम को कामयाब बनाने का हलफ दिलाया। ये प्रोग्राम अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। बाकी खबरों से पहले ये तिजारती वक्फा।
2: लूकन हिस्स फिकर लूकन हिंदान टीवी मुखालिफ भारत अभियान सासी टीवी बीमारी हिंस निशानी ताप सीनस दग थक सित खून यून रोतल अरख मल न रोजन वजन कम गसुन तो बहक तिशी टीवी बीमारी हिंस अलामत टीवी छुन ला इलाज के तमाम सरकारी मरकजन पर टीवी बापत टेस्ट ते इलाज बिल्कुल मुफ्त जानकारी प्रयो नजदीकी हेल्थ सेंटर या टीवी मुक्त भारत अभियान ऐप पेट टीवी हारित मुल्क जेन लुक मफातस मजेरी स्टेट ट्यूबरक्लोसिस सेल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर।
0: वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अमृतसर पंजाब में तामीर नौशुदा जम्मू कश्मीर हाउस का इफ्तिताह किया। सकाफती अहमियत की हामिल इस इमारत को जदीद सहूलियात से लैस किया गया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को हर सतह पर सहूलत फराहम करने के लिए बामानी इकदाम कर रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर हाउस में दस्तियाब सहूलियात और खिदमात का भी जायजा लिया। इस सहूलत से अमृतसर जाने वाले जम्मू कश्मीर के मरीज और दीगर बाशिंदे इस्तेफादा कर सकेंगे। वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, वजीर आला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, रेजिडेंट कमिश्नर के रमेश कुमार, खातिर तवाजो महकमे की सेक्रेटरी अवनी लवासा, एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर अनिल शर्मा और पंजाब सरकार के कुछ अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। इसी दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने यूपीआई लेन देन पर आयद किए जाने वाले टैक्स के बारे में जाहिर किए जा रहे खदशात को नकारते हुए कहा है कि इस निजाम को चलाने में सरमाया लगता है, तमाम लोगों पर इसका बोझ नहीं पड़ना चाहिए।
3: पर्सन टू पर्सन पैसा ट्रांसफर होगा, उसमें कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद इंडिविजुअल कंज्यूमर्स पे चार्ज तब तक नहीं होगा जब तक आप एक सीलिंग क्रॉस नहीं करेंगे। इस यूपीआई सिस्टम को चलाना जो है वो सस्ता नहीं है। सच्चाई ये भी है कि जो चीज हमें मुफ्त में मिलती है उसको हम ठीक तरह से अप्रिशिएट नहीं करते। इसके चार्जेस आम लोगों पर ना लगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी कंपनी पर चार्ज लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि कंपनी वाले तो वैसे भी यूपीआई से अच्छा कमाते हैं।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान मारूफ कलमकार और कसीर लिसानी शायर डॉ सतीश विमल की कश्मीरी शायरी पर मबनी अंग्रेजी किताब जर्नल ऑफ द वे पॉइंट्स की रस्में इजराई अंजाम दी। ये किताब मारूफ तर्जुमा निगार और शायर मुश्ताक बर्क ने तसनीफ की है। इस किताब में सतीश विमल की 40 कश्मीरी नज्मों का अंग्रेजी तर्जुमा शामिल किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डॉ सतीश विमल की अदबी काविशों की सराहना करते हुए उनकी नज्मों का अंग्रेजी तर्जुमा करने पर मुश्ताक बर्क को मुबारकबाद दी है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। सरकार ने बजट में किए गए अहम ऐलान पर अमल दरामद करते हुए जिस्मानी तौर से खास अफराद के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए दी। उन्होंने कहा कि यह सहूलत जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और ई बस सर्विसेज पर दस्तियाब होगी। जम्मू कश्मीर हैंडीकेप्ड एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले के लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला और ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा का शुक्रिया अदा किया है। قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج کل جماعت

0: का सर फख्र से ऊंचा किया है। जम्मू कश्मीर में रोड सेफ्टी मुसाफिरों की हिफाजत और बहबूदी नीज माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए यूटी के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने तमाम कमर्शियल और मुसाफिर गाड़ियों की फिटनेस से मुतलिक जामे कवायद व जवाबित जारी किए हैं। इस सिलसिले में यूटी के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक बाजाबता सर्कुलर जारी किया है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशुभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह किया। इस तीन रोजा कॉन्फ्रेंस का मकसद भारत में ताउन सरमायाकारी जिद्दत और हुनरमंदी को फरोग देना है। सेमिकॉन टू सिस्टम्स बिल्डिंग द इकोसिस्टम के मौजू पर इस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक शोबे से वाबस्ता माहरीन सरमायाकार स्टार्टअप और तालीमी इदारे शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर अजम ने कहा कि आलमी चैलेंज के बावजूद भारत की मईशत ने 7.8% शरह से तरक्की की है और मुल्क में सेमीकंडक्टर का शोबा तेजी से वसत पा रहा है। पैदाइश और अमवात की रजिस्ट्रेशन से मुतलिक तरमीम बिल यकुम अक्टूबर से नाफिजुल अमल हो रहा है। यह बिल पार्लियामेंट के हालिया इजलास में पास किया गया था। अब मौसम से मुतलिक इतला। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 6:16 और गुरूब आफ्ताब शाम 6:33 पर होगा। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निपटने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का साइंस और पॉलिसी के दरमियान मुअसर राबता करने पर जोर। वजीर अजम के जन्मदिन के मौके पर मुल्क भर में एक माह तक जारी रहने वाले सेवा संकल्प अभियान का आगाज। वजीर अला के हाथों अमृतसर पंजाब में तजदीद शुदा जम्मू कश्मीर हाउस का इफ्तिताह। और हुकूमत ने जिस्मानी तौर से खास अफराद के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम करने का किया ऐलान। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अब समाप्त करें तबसिरा, हमें इजाजत दें, खुदा हाफिज।
1: आदाब। आज का तबसिरा लेकर हम हाजिर। आजाद हिंदुस्तान की तारीख में 17 सितंबर के दिन को खास अहमियत हासिल हो गई। आज मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 76वां यौम पैदाइश है। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से लगातार भारत के वजीर आजम हैं। उनकी कयादत में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद 2019 और 2024 में भी लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। यूं वो मुल्क के सबसे लंबे अरसे तक वजीर आजम का ओहदा संभालने वाले गैर कांग्रेसी लीडर हो गए हैं जो मुंतखबा जमहूरी हुकूमत के सरबराह की हैसियत से अगले माह की 7 तारीख को 25 साल की मियाद मुकम्मल करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 से लगातार 12 साल से ज्यादा अरसे के लिए गुजरात के वजीर आला रहे और उनकी कयादत में भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार असेंबली चुनाव में जीत दर्ज की। नरेंद्र मोदी 17 सितम्बर 1950 को जब मुल्क को आजाद हुए सिर्फ 3 बरस ही गुजर गए थे गुजरात के वेदनगर इलाके में एक आम से मुतवस्त घराने में पैदा हुए। बचपन से ही आवामी खिदमत की तरफ उनका मैलान था। उन्होंने 9 उम्री में ही घर छोड़कर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस सफर की तकमील पर वो 17 साल की उम्र से ही RSS में शामिल हो गए। उन्होंने दहाइयों तक तंजीम साजी और कयादत की अपनी उम्दा सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। 2001 में गुजरात का वजीर आला बनने पर नरेंद्र मोदी ने समाज सेवा के अपने फितरी रुझान के मुताबिक एक हुक्मरानी के मॉडल को अमलाया। देखते ही देखते गुजरात मॉडल ने हुक्मरानी और तरक्की के एक नए नमूने की हैसियत हासिल की। यही गुजरात मॉडल नरेंद्र मोदी के कौमी सियासत में आने और वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार बनने का मौजिब बना। वजीर आजम के ओहदे पर फाइज होने के बाद नरेंद्र मोदी ने अच्छी हुक्मरानी और आम आदमी पर मरकूज पॉलिसियों को मुल्कगीर सतह पर अमलाने के लिए फलाही स्कीमों की अमलावरी शुरू की और इन स्कीमों की अमलावरी ने उनकी लगातार सियासी कामयाबी में अहम रोल अदा किया। इन फलाही स्कीमों में बतौर खास प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत स्कीम और डिजिटल इंडिया जैसी स्कीमें शामिल हैं। आदातशुमार से पता चलता है कि 2014 में शुरू की गई जनधन योजना के तहत अब तक ऐसे लोगों के 59 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं जो इससे पहले बैंकिंग निजाम से जुड़े न थे। इनमें 49 करोड़ बैंक खाते दीही और दूरदराज इलाकों में खोले गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5.5 लाख गांव में घरेलू बैतुलखला तामीर करके उन देहात को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाया गया। आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत सरकार की तरफ से इक्तिसादी तौर पर कमजोर 18 करोड़ कुंबों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की गई। डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत मुल्क के

0: एक करोड़ से ज्यादा पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया। यूं इन जैसी फलाही स्कीमों की बदौलत मुल्क की मईशत और माशरत में इनकलाबी नौयत की तब्दीलियां लाई गई। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने आज से वजीर अजम की सालगिरह के मौके पर और उनकी 25 साल अवामी खिदमात को उजागर करने के लिए मुल्क भर में एक महीने तक जारी रहने वाले सेवा संकल्प अभियान शुरू किया है। इस ताल्लुक से मुल्क के हर इलाके में अवामी खिदमत के जज्बे को फरोग देने के लिए प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं और आशीर्वाद के दिए जलाए जा रहे हैं। जमहूरी निजाम में हर सियासी सोच और तरक्याती अप्रोच से इख्तलाफ करने की गुंजाइश मौजूद है। ऐसा वजीर अजम नरेंद्र मोदी और उनके तरक्याती मॉडल के ताल्लुक से भी हो सकता है। ताहम इस हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता कि मुल्क की आजादी के बाद यहां की सियासत मईशत और माशरत पर जिन चंद अहम तरीन शख्सियात ने देरपा और अनमिट निशान छोड़े हैं उनमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। तब सिरा खत्म हुआ। शब बखैर।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की यात्री
3: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
3: तेरी वाईफाई है ना?
4: बुद्धू सुधर जा।
6: समीन मोहतरम, अभी तक आप आकाशवाणी श्रीनगर से उर्दू में खबरें और तबसरा समाप्त कर रहे थे। मीडियम पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। रात के 8 बजा हुआ चाहता है पेश खिदमत प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद। संगीत से भरा हुआ फौजी भाइयों का ये मनपसंद प्रोग्राम लेकर फिर से एक बार आपका दोस्त आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तमाम प्रोग्राम सुनने वाले दोस्तों और फौजी भाइयों को मेरा प्यार भरा आदाब। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं प्रोग्राम की पहली पेशकश उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

लीजिए फौजी भाइयों, सुनते हैं मुस्कान, माफ कीजिएगा, लीजिए फौजी भाइयों, सुनते हैं कसूर फिल्म से प्रोग्राम का अगला नगमा उदित नारायण और अलकैकनिक की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम शबन ने।

Lei ci faceva io sun te sonu nigam or anurada portwal ki awazon mein program ka agla nagma maine dil tujhko diya film se parveen बदरवाश के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है डब्बू मलिक ने।

0: درسق بین تس پروگرام گنین چگت بین یلسترون سرمق میونی پیا میدیم ویفی کنگ چز آکاشوانی کرگی لیکن هن تانگرگن چیوت وقت سپو خبرونی تو چندوک کسا تا آکاشوانی دهلی کنا هندی انگریزی دونا اردین خبرون ریلی بید ریلیولا گیر بازد
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में एक महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
2: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक हमने तय किया है।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
3: अप्रोच इन सेमिकॉन 2.0,
4: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
3: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक बाय द मार्केट।
1: श्री वैष्णव ने बताया

0: एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे।
2: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
2: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने MyGov

0: एक अच्छी पहल बताया।
1: माई जीओवी के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं, साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता, बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
0: इस माईगोव प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
3: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
2: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड

0: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में एक महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1,00,000 crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final match of the T20 series in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet the scent. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating the fifth edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है। और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth.
2: जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी। इसके बाद के एडिशंस में बात आगे बढ़ी। अगले एडिशंस में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे। पिछले साल हमने पायलट लाइंस और टेस्ट चीज पर चर्चा शुरू की। कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की। और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप देश और दुनिया के कस्टमर्स तक पहुंचना शुरू हुई है। और अभी अभी मोहाली और सूरत में दो और प्लांट्स में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Mr. Modi said the outlay for second phase of the India Semiconductor Mission 2.0 has been increased to $13.5 billion from $8 billion in the first phase. He said 12 semiconductor projects have so far been approved and more projects will be approved in the next phase. Later, addressing a press conference on the sidelines of the event this afternoon, Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw said investment commitments worth around 1,00,000 crore rupees have been received so far under the Semicon 2.0 ecosystem. He said India will target at least 200 startups and companies engaged in chip design

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सप्लाई चेन को आलायकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के वादे मौसूल हुए हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि वो तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा, जबकि अमरीका ने रूसी खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 100% महसूल आयात करने का बिल मंजूर किया है। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम मोदी की 76वीं सालगिरह और अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हो गया है और मर्दों के क्रिकेट में दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सप्लाई चेन को आलायकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिल एतमाद मैन्युफैक्चरिंग मराकज की तलाश में है और मुल्क इस जरूरत को पूरा करने के लिए मुस्तकिल तौर पर खुद को तैयार कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अहम सनअतों में भारत की तरक्की आलमी सप्लाई चेन को मजबूत बनाएगी और सप्लाई के बदलते हुए चैलेंजों के दरमियान नए मौके फराहम करेगी। वजीर आजम मोदी ने यह बात नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करते हुए कही।
1: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
0: वजीर आजम मोदी ने उजागर किया कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निजाम तेजी से वसी हो रहा है और इख्तिरा सरमायाकारी और तरक्की के नए मौके फराहम कर रहा है।
1: जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की। इसके बाद के एडिशंस में बात आगे बढ़ी। अगले एडिशंस में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे। पिछले साल हमने पायलट लाइंस और टेस्ट चीज पर चर्चा शुरू की। कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप देश और दुनिया के कस्टमर्स तक पहुंचना शुरू हुई है और अभी अभी मोहाली और सूरत में दो और प्लांट्स में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: जनरल मोदी ने कहा कि भारत की मईशत तरक्की कर रही है जबकि मुल्क पर दुनिया का एतमाद भी बढ़ रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में मुनक़िदा ब्रिक्स सरबरा मीटिंग का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत ने कामयाबी के साथ इस सरबरा मीटिंग की मेजबानी की जहां नई दिल्ली एलामिया इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि यह भारत पर बढ़ते हुए आलमी एतमाद का एक और सबूत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि अगला कदम सेमीकॉन 2.0 के जरिए सनअत को फरोग देना है जो 6 अहम सुतूनों सेमीकंडक्टर डिजाइन, मशीनरी और मवाद, सिलिकॉन कंपाउंड, लॉजिक फैब्रिकेशन और तहकीक व तरक्की पर मरकूज है। जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत का मकसद सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में चिप डिजाइन के सेक्टर में कम से कम 200 स्टार्टअप्स और कंपनियों की मदद करना है। बाद में नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन 2.0 इको निजाम के तहत अब तक तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के वादे मौसूल हो चुके हैं। रूसी खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर अमरीका की जानिब से 100% महसूल आयात करने वाले कानून के मंजूर होने के बाद भारत ने आज कहा कि वो अपने माशी मफादात के तहफ्फुज और तवानाई की जरूरतों को पूरा करने को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। वजारत खारजा ने कहा कि भारत अपने 104

0: 40 करोड़ शहरियों की तवानाई की जरूरतों को पूरा करने को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है और मुख्तलिफ ज़राए और बदलती हुई सूरतेहाल को मद्देनजर रखते हुए तवानाई हासिल करने का सिलसिला जारी रखेगा। वजारत ने कहा कि हालिया महीनों में इस मुद्दे पर अमरीका के आला सतही हुकाम से बातचीत हुई है। भारत ने दो तरफा ताल्लुकात पर उसके मुमकिन असरात वाज़े कर दिए हैं। वजारत खजाना कल से नई दिल्ली में विकसित भारत की जानिब सफर के लिए माली एयानत के मौजू पर दो रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी। वजारत ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में रियासत और मरकजी खितों के वजराय खजाना और खजाने के सेक्रेटरीज शामिल होंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और कई रियासतों के वजराय आला और वजराय खजाना भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी तरह अहद बस्ता है। उन्होंने भूटान के वजीर आजम शेरिंग तोबगे और वजीर खारजा डीएन ढुंग्याल के हमरा भूटान आने वाले भारतीय शहरियों के लिए बैनुल अक्वामी यूपीआई के दूसरे मरहले का मुश्तरका तौर पर आगाज किया। डॉ जयशंकर थिम्पू भूटान के दो रोजा दौरे पर हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि भूटान में यूपीआई के इस्तेमाल के साथ ये इकदाम भारत और भूटान के दरमियान यूपीआई पर मबनी दो तरफा डिजिटल अदायगी की कनेक्टिविटी को मुकम्मल करता है। इस मौके पर भारतीय इदारों में आला तालीम हासिल करने वाले भूटान के तलबा के लिए नेहरू वांगचुक स्कॉलरशिप स्कीम में तोसी से मुतालिक मफाहमतनामे का भी तबादला किया गया। डॉ जयशंकर ने इसे तालीम और सलाहियत साजी के शोबे में भारत और भूटान के बाहमी तआवुन को मजीद आगे बढ़ाने वाला कदम करार दिया। जनाब जयशंकर ने वजीर आजम टोबगे और भारत में तैयार करदा 54 इलेक्ट्रिक गाड़ियां सौंपी। उन्होंने कहा कि भारत ई मोबिलिटी और पायदार ट्रांसपोर्ट की जानिब भूटान की पेशकदमी की हिमायत कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 76वीं सालगिरह के मौके पर एक माह तक जारी रहने वाला मुल्कगीर सेवा संकल्प अभियान शुरू किया। जनाब मोदी 1950 में आज ही के दिन गुजरात के महसाना जिले में वाक एक छोटे से शहर वडनगर में पैदा हुए थे। इस अभियान का मकसद वजीर आजम मोदी की अवामी खिदमत के अज़्म को उजागर करना और लोगों खासतौर पर नौजवानों को अवाम की खिदमत के मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेने की तरगीब देना है। यह मुहिम 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के वजीर आला के तौर पर नरेंद्र मोदी के हलफ लेने के 25 साल मुकम्मल होने के मौके से भी मुंसलिक है। यह मुहिम अगले माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने इस मुहिम का आगाज जनाब नरेंद्र मोदी के आबाई शहर वडनगर से किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी को मुल्क मुकदम के उसूल से बेहतर तौर पर बयान किया जा सकता है। इस अभियान के पहले दिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके तहत मुल्क भर में खून अतिया करने के कैंप लगाए गए हैं। बीजेपी सदर नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में खून अतिया कैंप का इफ्तिताह किया और पार्टी के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों के साथ खून अतिया किया। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने खाटू श्याम मंदिर में हवन किया। आज शाम आशीर्वाद का दिया प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया, जिसके तहत खानदानों खासतौर पर सरकारी स्कीमों के मुस्तफिदीन ने अवामी खिदमत में जनाब मोदी के 25 साल मुकम्मल होने पर तशक्कुर का इजहार करते हुए दिए जलाए। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज वजीर आजम मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनिया के कई रहनुमाओं ने वजीर आजम मोदी को उनके 76वें यौम पैदाइश पर पुरजोश मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में उनकी क्यादत और ताउन के लिए भरपूर सताइश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इस दौरान वो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अवामी फलाह बहबूद के पुख्ता अज़्म के साथ काम करते रहे हैं। सेवा और सुशासन के विजन से मुतासिर होकर हुकूमत जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के जरिए 2047 तक विकसित भारत के हदफ के लिए काम कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की खसूसी सीरीज में माई गोव प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपके लिए इस विजन को अमली शक्ल देने की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: 2014 में जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओहदा संभाला तो उनके तर्ज हुक्मरानी में एक अहम तस्वुर नुमा